0: मेरे हाथ है।
1: यादों के सफर का शुरुआत हमने किया फिल्म दिल दग देखो, शम्मी कपूर और आशा पारेख की फिल्म, उषा खन्ना के संगीत पर, और उसके बाद फिल्म एक झलक, 1957 की फिल्म एक झलक, एस एच बिहारी गीतकार, पर्दे पर राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला, हेमंत कुमार संगीतकार और आवाज हेमंत कुमार। और अब चलो शामिल करते हैं माय गॉड साल 1949, फिल्म का नाम आपको याद होगा बड़ी बहन, रहमान सुरैया गीताबली, आवाज लता मंगेशकर और प्रेमलता। यह है संगीत के जानकार और यह है यादों का सफर।

0: रेडियो वो हो जिसमें महबूब का दम हो, रेडियो वो जिसमें महबूबा की सांसें हो, रेडियो वो जिसमें समाज सेवा हो।
1: और वो रेडियो है 79.1 ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन's फर्स्ट 24 आवर हिंदी रेडियो स्टेशन 79.1 रेडियो ब्रिस्बानी। और रेडियो ब्रिस्बानी 79.1 ब्रिस्बेन पर आपके लिए हम पेश करते हैं संगीत की झनकार।
2: हमारे पिताजी बहुत गाली देते थे, कोई दरवाजे से गुजरे तो गाली, बिल्कुल ये सत्य घटना है, बहुत गाली देते थे, कोई रास्ते से गुजरे बिना मतलब के गाली दे। एक दिन मर गए, मरने के पहले हम दो भाई हैं तो हमको बुला के कहे कि देखो अब तुम ज्यादा पढ़ लिख लिए हो, कुछ ऐसा करना कि गांव के लोग कहें कि इसके पिताजी बहुत अच्छे थे। अब हम दोनों भाई सोच में पड़ गए कि जीवन भर इनने पूरे मोहल्ले वालों को गाली दिया है, हम क्या करें कि लोग कहें कि इसके पिताजी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। पिताजी के मरने के बाद हम दोनों भाई लाठी लेके बैठते हैं दरवाजे पे, जो भी दरवाजे से गुजरता है दौड़ा दौड़ा के पीटते हैं, पूरा गांव कहता है इससे अच्छा तो इसके पिताजी थे जो केवल गाली देते थे, ये तो पीटता भी है, ये तो पीटता भी है।
1: संगीत के झनकार पर आप सुन रहे हैं यादों का सफर, और जिसमें वन मेलोडी वाज सुप्रीम फिल, इसको जारी रखते हुए हम अब पेश करते हैं आपके लिए एक बार फिर शमी कपूर की फिल्म तुमसा नहीं देखा एंड अनदर एक्ट्रेस ही ब्रोक ऑन द स्क्रीन, अमिता।

शम्मी कपूर की फिल्म तुम सा नहीं देखा से निकली हुई अप्पी नैयर के संगीत पर अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी को यादों के अंतर्गत वन मेलेडी वो सुप्रीम।

संगीत किचन का केंद्र के तब सुन रहे हैं यादें, और यादें में आपके लिए पेश कर रहे हैं ऐसे गीत, उन दिनों के गीत

0: बताओ वो ऐसी कौन सी चीज है जिसको लोग खरीदते तो पीने के लिए लेकिन पीते नहीं है?
1: ऐसी कौन सी चीज है जिसको लोग पीने के लिए खरीदते और पीते ही नहीं है?
2: अरे गधी, वो गिलास की बात कर रहा है। तो फिर से शुरू हो गया। अबे साले, अच्छा ठीक है भाई, पूछो, कभी तो जवाब दे ही दे।
0: अच्छा चलो ये बताओ, वैसे कौन सी चीज है जो ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है लेकिन अपनी जगह से नहीं हिलती?
1: ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर जाती और नीचे भी आती लेकिन अपनी जगह से नहीं हिलती है?
2: सीढ़ी। ऊपर भी जाती, नीचे भी आती।
3: यह है संगीत जानकार और आपके साथ फिरोज खान। और अब चलो शामिल करते हैं साल 1956। एक बार फिर हेमंत कुमार, राजेंद्र कृष्ण गीतकार, और संगीतकार एक बार फिर हेमंत कुमार। पर्दे पर प्रदीप कुमार के साथ वाजंती माला। यह है संगीत की जानकार और मैं हूं आपके साथी फिरोज खान। फिल्म ताज।

साल 1956 अभी आपने सुना फिल्म ताज से निकाली हुई, हेमंत कुमार के संगीत पर खुद हेमंत कुमार की आवाज, पर्दे पर प्रदीप कुमार, वैजयंती माला, हेलन। आपको याद होगा फिल्म ताज 1956 के फिल्म। और अब चलो जारी रखते हैं यादों का सफर में। आपको याद रहे यादों का सफर आपके लिए हर रविवार को 10 से लेकर 11 साढ़े 11 बजे तक करीबन, और उसके बाद हम पेश करते हैं द अदर गोल्डन ईयर्स ऑफ बॉलीवुड, हिट्स ऑफ 90s। फिलहाल यह है संगीत के जानकार और मैं हूं आपका साथी फिरोज खान।

0: बनाया।
1: शम्मी कपूर और सारा बानो की फिल्म कश्मीर की कली से निकली हुई, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी को। और अब शामिल करते हैं इस सेगमेंट में आशा भोसले, व्हेन मेलोडी वाज सुप्रीम।

0: संगीत के झिंका पर आप सुन रहे हैं व्हेन मेलोडी वाज सुप्रीम, यादों के सफर के अंतर्गत।
1: आप दोनों के तलाक के बाद बच्चा किसके साथ रहेगा?
2: जज साहब, बच्चा मेरे साथ रहेगा क्योंकि बच्चा मैंने पैदा किया है तो इस पर मेरा अधिकार है।
1: और तुम क्या कहते हो?
3: जज साहब, एक बात पूछूं?
1: हाँ पूछो। अगर मैं किसी एटीएम में कार्ड डालकर पैसे निकालूं तो उन पैसों पर अधिकार किसका होगा, मेरा या एटीएम का?
4: रॉक रॉक रॉक बेबी रॉक।

यह है संगीत किशनकर और आपका साथ फिरोज खान। हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक आपके लिए हम पेश करते हैं चुने हुए लोकप्रिय संगीत पुरानी फिल्मों से निकाली हुई। अभी छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेंगे, इसके बाद वापस आकर जारी रखेंगे संगीत की जानकार। यह है रेडियो 79 ब्रिस्बेन, आपके साथ फिरोज खान, संगीत की जानकार। इस स्टेशन पर हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक।

0: पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: मनोरंजन नहीं बल्कि समाज से किसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ के साथ फीजी समाचार, भेंटवार, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं सुनते रहिए।
3: छोटी सी बड़ी शिकायत के बाद ये है संगीतकार और मैं हूँ आपके साथ ही फिरोज का हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे।
4: संगीत की जानकार पर ये यादें जलवे अमचल पड़े हर का घुमा हुआ जलवे मचल पड़े तो शहर का घुमा हुआ जुल्फ बिखर गई तो सिहा रात हो गई।

प्यार की मीठी किसक आंखों में पहले प्यार की नमी सोचों में किसी की खूबसूरत चेहरा और तरोताजा गुलाब के सुर्ख फूल है ना यादों का।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: आपने हमको चुना तो हम आपका स्वागत कर रहे हैं माला से, गीत माला, अनमोल नगमे, नए पुराने फिल्मों के गाने गीत माला में।
1: अभी आपने सुना फिल्म मिलन, और अब शामिल करते हैं नाना पाटेकर सलमान खान की फिल्म खामोशी। यह है संगीत की जानकार आपके साथ फिरोज खान।

ये है 1701। आप सुन रहे हैं हिट्स ऑफ 90s और रिसेंट पास्ट हिट, ऐसे गीत जो हिट परेड में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। ऐसे ही गीत से हम अपने कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। रिसेंट पास्ट हिट्स और हिट्स ऑफ 90s, ऐसे गीत जिसको एक बार सुनकर बार बार सुनने को जी चाहता है। जी हाँ, गीत माला में आप शामिल करते हैं फिल्म अकेले हम अकेले तुम। यह है फिल्म अकेले हम

0: के झनकार 1701 ब्रिस्बेन पर आप सुन रहे हैं रिसेंट पास्ट हिट्स ऑफ 90s फिरोज खान के साथ।
1: फिलहाल गीत माला को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर वही लोकप्रिय कलाकार हेलन, नाना पाटेकर और सलमान खान की फिल्म खामोशी से निकाली हुई एक और सरल हिट ऑफ 90s। यह है संगीत की झनकार, आपके साथ फिरोज खान। फिलहाल गीत माला को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर वही लोकप्रिय कलाकार हेलन, नाना पाटेकर और सलमान खान की फिल्म खामोशी से निकाली हुई एक और सरल हिट ऑफ 90s। यह है संगीत की झनकार, आपके साथ फिरोज खान।

गीतमाला के अंतर्गत भी आप सुन रहे थे हिट्स ऑफ 90s के एक और सरल संगीत, बहुत ही खूबसूरत फिल्म खामोशी से निकाली हुई। आपको मौका रहे तो फिल्म देखिएगा। नाना पाटेकर, सलमान खान और इसमें हेलन ने भी काम किया है। खामोशी से निकाली हुई हिट्स ऑफ 90s और रिसेंट पास हिट के अंतर्गत गीतमाला को आगे बढ़ाते हुए शाहरुख खान की फिल्म जोश।

फिल्म खामोशी से निकली हुई, आपको याद रहे सलमान खान, नाना पाटेकर और उसमें हेलन ने भी काम किया। अगर आपको मौका रहे ये फिल्म जरूर देखिएगा, मुझे तो बहुत पसंद आया था। संगीत और गीतमाला के आखिर नगमा आपके लिए पेश कर रहे हैं यस बॉस। संगीत की जानकार स्टेशन पर हर रविवार को, की जानकार पर आपका साथ ये है फिरोज खान।

गीत वहां के आखिर जंकमा भी आप सुन रहे थे, फिल्म एस बॉस से निकली हुई। और इसके साथ साथ अपने प्रोग्राम के समाप्ति पर पहुंच चुके हैं। संगीत के जानकार वापस आएंगे आपके पास अगले रविवार को 10 बजे से। साथ दीजिए, इंतजार कीजिए। मैं हूं आपका साथी फिरोज खान। अगले रविवार तक के लिए बी हैप्पी।

0: तूने अभी।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड़ा। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Hmm, go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
4: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
3: अरे वाह, इनका पता बताना।
4: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701।

Namaskar. Namaskar. Good afternoon and welcome back to Radio Brizwani. नमस्कार, राम राम, केम छो, सत श्री अकाल और मजामा साथ में सलाम अलैकुम और बुला कहते हुए एक बार फिर रोहित सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहेगा रेडियो ब्रिजवानी पर। ठीक अभी से लेकर 2:30 बजे तक आपका हमारा साथ है रेडियो ब्रिजवानी पर। आपने अपना रेडियो भी खोला, आप सभी का हार्दिक स्वागत हम रेडियो ब्रिजवानी पर एक बार फिर करना चाहेंगे। लाइव कार्यक्रम स्टूडियो से अपने आप सभी के लिए पेश कर रहे हैं। ठीक अभी से लेकर 2:30 बजे तक 2 घंटे के लिए हमारे साथ जुड़े रहेगा रेडियो ब्रिजवानी पर। शाम का सफर में आप सभी ने अपना रेडियो अभी खोला, आप सभी का हार्दिक स्वागत एक बार फिर करना चाहेंगे रेडियो ब्रिजवानी पर। मैं हूँ रोहित सिंह, ठीक 2 घंटे के लिए आपका हमारा साथ है रेडियो ब्रिजवानी पर। यहाँ कुछ लोग ब्रिस्बेन में नहीं है, शायद घूमने चले गए होंगे, शायद स्टेट गए हैं, फिजी गए हैं, देश विदेश में घूमने गए हैं, और कुछ लोग शायद ब्रिस्बेन आए हैं घूमने के लिए। आप सभी का हार्दिक स्वागत है रेडियो ब्रिजवानी पर और साथ में ब्रिस्बेन में आपका हार्दिक स्वागत है। याद कीजिएगा मैं हूँ रोहित सिंह, ठीक अभी से लेकर 2:30 बजे तक 2 घंटे के लिए मिले जुले संगीत में आपका साथ दूंगा रेडियो ब्रिजवानी पर। लाइव कार्यक्रम हम आपके लिए पेश करें अपने स्टूडियो से हमेशा की तरफ, फोन नंबर 3279-1701 आपका हमारा साथ है रेडियो ब्रिजवानी पर। जी हाँ दोस्त साथियों, साथ दीजिएगा देश विदेश में कार्यक्रम, आप सभी इंटरनेट द्वारा सुन रहे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत एक बार फिर हम रेडियो ब्रिजवानी पर करना चाहेंगे। और अगर आप इंटरस्टेट में आपका हार्दिक स्वागत है और ब्रिस्बेन में आप जहां पर भी हमारी आवाज आप तक पहुंच रहा है, आप सभी का हार्दिक स्वागत है रेडियो ब्रिजवानी पर। शाम का सफर में खूबसूरत कार्यक्रम 2 घंटे के लिए हम आपके लिए पेश करेंगे लाइव अपने स्टूडियो से। जरूर से साथ दीजिएगा 2 घंटे के लिए आपका हमारा साथ रेडियो ब्रिजवानी पर शाम के सफर में।

दोस्तों, अगर आपने अपना रेडियो भी खुला, आप सभी का हार्दिक स्वागत हम करना चाहेंगे रेडियो बिजवानी पर, आपका सफर में रोज के साथ है। ठीक है, से लेकर ढाई बजे तक साथ जरूर दीजिएगा रेडियो बिजवानी पर। बहुत बाहर बहुत ही कड़क धूप है दोस्तों, साथियों मेरे ख्याल से 3 डिग्री है इधर दिल्ली की ओर। अगर आप कैरंडेल और उस तरफ रहते हैं माउंट गवर्नमेंट की ओर, तो मेरे ख्याल से 26 डिग्री है। सावधानी जरूर पड़िएगा, पानी ज्यादा पीजिएगा, बहुत गर्मी है दोस्त साथियों, याद कीजिएगा। हमेशा की तरह कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं स्थानीय कलाकार से, हम अपना कार्यक्रम आरंभ करते हैं हमेशा की तरह एडी विल्सन की आवाज में, खूबसूरत संगीत आप सभी के लिए रेडियो बिजवानी पर।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असीं 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असीं होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: खूबसूरत संगीत आप सभी के लिए अलकन याग्निक की आवाज में। आप सभी को याद होगा कि ठीक अभी से लेकर 2:30 बजे तक आपका हमारा साथ है शाम का सफर में। साथ दीजिएगा

एक बार फिर बहुत ही खूबसूरत गीत अलका याग्निक की आवाज में फरमाइश करने वाले हैं श्रीमान श्रीमती रवि और श्रीमान श्रीमती रवि प्रताप आप दोनों के लिए।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
4: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
5: और इसके तुम याद करना चाहते हैं श्रीमान श्रुति गंगा और गीता प्रसाद, आप दोनों के लिए

याद कीजिएगा रोहित सिंह के साथ ही कार्यक्रम आप सभी रेडियो ब्रिजवाणी पर सुन रहे हैं, साथ जरूर दीजिएगा। ठीक है, अभी से लेकर 2:30 बजे तक आपका हमारा साथ है।

रोहित सिंह के साथ ये कार्यक्रम आप सभी रेडियो मेजबानी पर सुन रहे हैं और चलते इस गीत पे याद करते हैं स्विच के श्रीमान श्रीमती राव जी, आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, नमस्कार। आपने अभी मैसेज छोड़ा है मेरा मोबाइल में, चलते हैं खूबसूरत गीत आपके लिए हम पेश करते हैं श्रीमान श्रीमती राव जी के लिए खूबसूरत गीत। इप्सविच के रहने वाले आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए।

वॉइसिंग के साथ रेडियो मिस्वानी पर खूब से कार्यक्रम आप सभी सुन रहे। शाम का सफर ठीक अभी से लेकर ढाई बजे तक आपका हमारा साथ रहेगा। दोस्त साथी याद कीजिएगा, ये फरमाइशी कार्यक्रम में आप हमें जरूर से फोन कर सकते हैं 3279-1701 पर। अगर हमने आपका कॉल नहीं आ सकी, आप अपना नाम और फोन नंबर आंसर मशीन में डाल दीजिएगा और हम कोशिश करेंगे कि हम आपसे फिर फोन करके बातें करें। और चलते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक फरमाइशी नगमा हमारे पास आया है फॉरेस्ट डेल के शेख डैडी की ओर से, और जो गीत इन्होंने फरमाइश की है मैं इसे प्ले करने जा रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि ये दिस इज द गीत शेख अली वांटेड, मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ। लेट्स सी, अगर नहीं है तो आप हमें ज़रूर से फ़ोन करना। एक बार फिर चलते हैं। रोहित सिंह के साथ है रेडियो ब्रिजवानी पर।

चलते ही दोस्त साथी आपकी जगह रोहित सिंह के साथ ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं। चलते हैं शेख डेली, आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। होप दिस इज द सॉन्ग आप चाहते हैं, और क्योंकि यूट्यूब में बहुत कुछ नहीं है, डोंट हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन यूट्यूब। चलते हैं ओनली फॉर शेख डेली। अगर आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, आई होप दिस इज द राइट सॉन्ग यू वॉन्ट।

0: जो साथी याद कीजिएगा रोहित सिंह के साथ ही कार्यक्रम आप सभी रेडियो ब्रिजवानी पर सुन रहे हैं। चलते कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए आप सभी के लिए हम पेश करने जा रहे हैं और भी खूबसूरत गीत, पर उससे पहले
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
4: सांसों की माला पे समरू में।
5: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
6: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
5: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
7: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 04159526600 04159526600।
0: काजल है याद कीजिएगा रोहित सिंह के साथ ही कार्यक्रम आप सभी रेडियो ब्रिजवानी पर सुन रहे हैं। साथ दीजिएगा ठीक 2:30 बजे तक हमारे साथ जुड़े रहिए या थोड़ी देर के लिए। और

और ये जो अगला गीत है इसे इस गीत में हम याद करना चाहते हैं एक बार फिर इप्सविच के श्रीमान श्रीमती राव जी, आप एक कार्यक्रम सुन रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये गीत आपको बहुत अच्छा लगेगा।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
3: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
4: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
3: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
4: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
5: एक और खूबसूरत गीत श्रीमान शिवती राव जी के लिए। आप एक कार्यक्रम सुन रहे हैं, नमस्कार एक बार फिर, और खूबसूरत संगीत आपके लिए।

0: on what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
6: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

और दोस्तों इसी गीत के साथ साथ हम अपने कार्यक्रम के समाप्ति पर पहुंच गए। उम्मीद करता हूं कि आज का कार्यक्रम आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। हमारी और आपकी मुलाकात अगले रविवार की शाम ठीक 2:30 बजे से फिर होगा, और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। हमें इजाजत दीजिए, हमारी और आपकी मुलाकात अगले रविवार की शाम होगा 12:30 बजे से। और याद कीजिएगा स्कूल हॉलीडे शुरू हो गया है कल से, और 2 सप्ताह की छुट्टी पर सभी स्टूडेंट्स हैं, और हैव अ ब्यूटीफुल हॉलीडे जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं। और इसी के साथ हम आप सभी से रुख्सत लेते हैं, इजाजत लेते हैं, और आप सभी से नमस्ते कहते हैं। शब खैर और विना का।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701।

हेलो एंड गुड आफ्टरनून, आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विश्वानी 1701 इस 239 स्टूडियोज नाउ।

जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुनने वालों को एक बार फिर हमारा प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सिसरी अकाल। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विजवानी 1701। जी हाँ दोस्तों, अभी आपके साथ या रोहित सिंह ने चले हैं अब आपके साथ सो। और थोड़ा सा अपोलॉजी है कि आज शायद हम आपका साथ 5 बजे तक नहीं दे सकते हैं। आई गॉट अ बिट ऑफ कमिटमेंट्स या, तो मेरा आपका साथ रहेगा शायद 3:30 तक। आज कोशिश करेंगे 3:30 तक आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए। दोस्तों कुछ भी आपके पास फरमाइश है तो आप 3:30 के बाद हमें मत कॉल कीजिएगा प्लीज। आई ऑलरेडी गॉट सम मेनी रिक्वेस्ट हियर, तो माफ कीजिएगा दोस्तों, 3:30 तक आज मैं सिर्फ आपका साथ दे पाऊंगी। के साथ साथ हम आज आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर आज आपकी शादी की सालगिरह है, आपके जन्मदिन है, कुछ भी खुशियां आप आपस में बांट रहे हैं, हमारे साथ भी बांटिए रेडियो विजवानी के साथ। और अगर आपको अनाउंसमेंट देना है तो आप हमें अनाउंसमेंट दीजिए 2:30 तक। सॉरी 3:00 तक। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं डेडिकेशन के लिए, फरमाइश के लिए 3279-1701 हमारा स्टूडियो डायरेक्ट लाइन नंबर है। और नहीं, अगर आपके पास मोबाइल नंबर है, यू कैन ऑलवेज SMS में।

और क्या आपको पता है मौत से बढ़कर भी सजा होती है? और क्या होती है वो? अकेले बैठकर अपने बीते हुए पल को याद करना, जो पल कभी चेहरे पर मुस्कान लाते थे आज वही आंखों में नमी छोड़ जाते हैं। कुछ लोग तो जिंदगी से चले जाते हैं, मगर उनकी यादें कहाँ जाती है ना? कभी हंसी थी जिन बातों में, आज उन्हीं बातों पर दिल भर आता है। वक्त तो आगे बढ़ जाता है दोस्तों, पर मन जो है, मन वहीं ठहर जाता है। मौत शायद एक पल में खत्म कर देती है, मगर बीती यादें की सजा इंसान को हर रोज थोड़ा थोड़ा ही तोड़ती है।

बहुत प्यारे से गीत आप सबके लिए हमने आज पेश किया पर्दे पर अनिल कपूर श्रीदेवी के लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वाणी। अगर आपने अभी ट्यून किया है, स्वागत है आप सभी का रेडियो विश्वाणी एम पर। ए है शाम का सफर। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सफर को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, जिसे मैंने लिया है 1978 की फिल्म त्रिशूल से लिया, वही पॉपुलर सॉन्ग जो सभी को पता है।

जी हाँ दोस्तों, अभी आपने सुना फिल्म तिशरू से लिया गीत। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास आज ज्यादा समय नहीं है दोस्तों, सिर्फ 3:30 तक मेरे पास समय है आपके साथ स्पेंड करने के लिए। तो चलते हैं, हम फरमाइशी शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि हम जो लोग भी ऑलरेडी हमें अपनी रिक्वेस्ट भेज दिए हैं, हम उनको निराश नहीं करना चाहते हैं। चलते हैं, शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले फॉरेस्ट लेक से फरमाइश है हमारे पास, जो गीत आप हमेशा गजल गीत है आप जगजीत सिंह की आवाज में सुनते हैं, और मेरा चन्ना रफ्ता रफ्ता वो मेरी गजल जोधा अकबर का गीत है। फॉरेस्ट लेक से हाफिज अली खान और जबीदा खान ने फरमाइश किया इस गजल को।

रफ्ता रफ्ता की फरमाइश करने वाले थे फॉरेस्ट लेक से हाफिज अली खान और जबीदा खान। और हाँ दोस्तों, मेहंदी हसन ने ओरिजिनल ही इस गीत को गाया है, नॉट जगजीत सिंह। आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी, आपकी अपनी पहचान। हम चलते हैं सैक्रामेंटो USA की ओर। पहले बार हमारे साथ जुड़ी प्रशा, तो आपने अगला गीत की रिक्वेस्ट किया है प्रदीप पर शर्मिला टैगोर और शमी कपूर के फिल्म से कश्मीर की कली से लेवा गीत है। आपकी रिक्वेस्ट पर पेश है मोहम्मद रफी, दीवाना हुआ बादल।

0: दीवाना हुआ बादल मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज का गीत आपने सुना। प्रशा ने फरमाइश किया था इस गीत को, जो हमें सुन रही हैं सैक्रामेंटो यूएसए में। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विश्वानी 1701। दोस्तों आज हमारा आपका साथ रहेगा ठीक 3:30 बजे तक। चलते हैं हमारे स्पॉन्सर्स की खबर सुनते हैं।
1: साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखें। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
0: And also, Ray Solar Power has got a one-time-only special for good batteries, starting from $9,999.33. Please contact Ray on 0430-525-896. Remember, the mobile number is 0430-525-896. Don't miss out. Special going only for 2 weeks. The next song is dedicated by Ray from Ray Solar Powers to all Radio Vishwani listeners.

आखिर एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। आपने सुना कुमार सानू की आवाज का बहुत ही प्यारा सा गीत है, जिसे फरमाइश करने वाले थे रईस सौलभ पावा के रे, एंड डेडिकेट किया था इस गीत को अपने सभी विश्ववाणी लिसनर्स को। रिमेम्बर, रईस सौलभ पावा हैज गॉट ओनली वन टाइम ओनली स्पेशल गुडविल बैटरीज स्टार्टिंग फ्रॉम $9,999.33 kW। प्लीज कॉन्टेक्ट रे ऑन 04305258 96 एंड डोंट मिस आउट दिस स्पेशल बिग स्पेशल ओनली फॉर 2 weeks। आप सुन रहे रेडियो विश्वानी, आपकी अपनी पहचान। हमारे स्टूडियोज में 3 बज चुके हैं दोस्तों। फॉरेस्ट डेल की ओर हम बढ़ते हैं। शेख डेरी की फरमाइश आई हमारे पास। फिल्म रॉकेट गर्ल का गीत आपने फरमाइश किया।

और आपने सुना फिल्म रॉकेट गर्ल से लेवा गीत, फरमाइश करने वाले थे फॉरेस्ट डेल से शेक डैडी। आप सुन रहे रेडियो विस्वानी 79.1 किलोहर्ट्ज पर। दोस्तों 4 मिनट हो गए हमारे स्टूडियोज में 3 बजकर, हम चलते हैं सैक्रामेंटो USA की ओर। ललिता गौतम हमें सुन रही हैं आपकी फरमाइश पर, सुनते हैं अगला गीत।

0: इस गजल को आपने सुना जगजीत सिंह की आवाज में फरमाइश करने वाली थी ललिता गौतम फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगला विच आग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी आग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
2: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
0: इस वक्त दोस्तों हमारे स्टूडियोज में 10 मिनट हो गए हैं 3:00। हम चलते हैं अगला गीत की ओर बढ़ते हैं। पर्दे पर राज कपूर फिल्म तीसरी कसम से लिया इस गीत को मैंने और मुकेश की आवाज का गीत है। शायद अपने अंदाजा लगा लिया होगा और फरमाइश किसने किया है। इप्सविच की ओर हम बढ़ते हैं। इप्सविच से हमारे पास फरमाइश है राव जी की ओर से। राव जी थैंक्स फॉर कॉलिंग।

मुकेश की आवाज का गीत की फरमाइश करने वाले थे राव जी, जो हमें सुन रहे हैं इप्सविच में हेरिटेज पार्क की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, लता जी की आवाज का गीत हमारे पास फरमाइश आई है, साधना फ्रॉम हेरिटेज पार्क, आपके लिए आपकी फरमाइश। मंडोले मेरा मंडोले।

मंगेशकर की आवाज का गीत की फरमाइश करने वाली थी साधना फ्रॉम हेरिटेज पार्क। हमारे पास चटनी गीत की फरमाइश है और इसे मैंने लिया धमाल फू चटनी फूल वीडियो। और किसने फरमाइश किया? विजयन फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए।

फुलावरी बिना चटनी कैसे बनी फिल्म धमाल फोर सिलेवा गीत और फरमाइशाती हमारे पास सैक्रामेंटो यूएसए से विजयन की ओर से हम चलते हैं दोस्तों विशार्ट से अगला गीत के लिए फरमाइश है हमारे पास किसकी हमेशा की तरह फिरोज और खतीजा की ओर से थैंक यू फॉर योर फीडबैक आर्ट दया आप दोनों के लिए अगला गीत

गीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे फिरोजा खतीजा फ्रॉम विशाद। दोस्तों हम चलते हैं सिडनी की ओर, जहां मैं सुन रहे हैं हमेशा की तरह रजिन मालती प्रसाद फ्रॉम ग्रीन एकर सिडनी। आप दोनों के लिए अगला गीत रफी साहब की आवाज।

चार दोस्तों शामिल हो गए थे हमारे साथ, रजन अमालती प्रसाद फ्रॉम ग्रीन एकर सिडनी। हम चलते हैं अगले गीत की ओर, बढ़ते हैं केडरन पार्क में। जोनी और सविता, थोड़ी सी देर हो गई है, खैर कोई बात नहीं, दो गीत और हम आपके लिए प्ले कर सकते हैं, उसके बाद हम आप किसी का कॉल नहीं ले सकते, आई एम सो सॉरी। चलते हैं अगले गीत की ओर, बढ़ते हैं केडरन पार्क की ओर। जोनी और सविता हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप दोनों के लिए अगला गीत।

बहुत प्रसंगीत दोस्तों, आपने सुना रफी साहब की आवाज में केड्रोन पार्क से फरमाइश करने वाले थे इस गीत को जोनी और सविता। और चलते आखिरी गीत पर हम आ पहुंचे हैं। और दोस्तों हमारे पास आई गॉट अ फ्यू कॉल्स या फ्यू मैसेजेस, या लोग कहते हैं कि अभी मत जाओ तो क्या करें, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़े देर के लिए आई, लेकिन आई तो आपका साथ निभाने के लिए ना, थोड़ी देर के लिए। आपने हमारी आवाज़ सुन ली, मुझे भी अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा। चलते हैं जो आखिरी गीत है उसे फरमाइश करने वाले हैं सैक्रामेंटो से कामनी नारायण और ललिता गौतम।

पहले सो इस गीत को फरमाइश करने वाली थी ललिता गौतम और साथ में कामनी नारायण फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए। इसी के साथ साथ हमारा चलने का समय हुआ। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है हमारा आपका साथ होता है ठीक 5 बजे तक, लेकिन आई गॉट बिट ऑफ कमिटमेंट्स टुडे, मुझे भी आज कुछ करना है, तो इसके लिए हम आपसे सॉरी चाहते हैं। हमारी अगली मुलाकात है नेक्स्ट वीकेंड पर सैटरडे 1 PM से शनिवार मसी म्यूजिक पर, लेकिन याद रखिएगा ठीक आज 5 बजे से आपके साथ हो जाएगी शशि चौहान, तो साथ उनका जरूर दीजिएगा। नमस्ते, खुदा हाफिज, टेक केयर, हैव अ नाइस वीकेंड, लव यू ऑल, गुड बाय।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
3: ओके, तुम आ रही हो? मैं जा रहा हूं। लगता है रूम में रह गई।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड

खैर, करती हूँ आपका स्वागत एक बार फिर। और मुझे पता है कुछ गड़बड़ी हो गई थी, इसीलिए शायद मैं आप तक ना पहुँच पा रही थी, मगर कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी ना। सो एक बार फिर आपका स्वागत मैं करती हूँ, एंड उम्मीद है कि आप

0: एक रंगीन शाम आपके नाम शशि जोखन के साथ।
1: ये शाम शानदार।
2: हाँ जी, आज रविवार की शाम, आज है 20 तारीख सितंबर। इस महीने के लगभग ये तीसरे हफ्ते में हम आ चुके हैं, मगर हर रविवार की तरह हमारी कोशिश यही रहती है कि आपके साथ मैं जुड़ जाऊं। करती हूं आप सभी का स्वागत। मुझे पता है लगभग 10 मिनट हो ही चुके हैं 5 बजकर, मगर कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी टेक्निकल गड़बड़ी हो जाती है, मगर उसे हम पीछे छोड़ते हैं। और रेडियो ब्रिजवाणी 1701 पर आप सुन रहे हैं एक रंगीन शाम आपके नाम, और करते हैं आज शाम की शुरुआत। कहती हूँ आप सभी को नमस्कार, कैमचो, सास्रियकाल और अस्सलाम वालेकुम।

हाँ जी, चलिए आराम से बैठिए। आप सुन रहे हैं एक रंगीन शाम आपके नाम, रेडियो प्रिजवाणी 1701 पर, और रविवार 5 से 7 बजे तक आपका साथ देती हूँ। इसी तरह आप भी साथ देते ही रहिए, मजेदार बनाएंगे ये 2 घंटों का सफर। ठीक है,

हाँ जी, आ चुके हैं ऐसे ऐसे गाने लेकर जो आपको बस डिफरेंट मूड्स और सेंटिमेंट्स की ओर ले जाए. ठीक है, तो कई ऐसे सॉन्ग्स हैं हमारे पास जो मैं बारी बारी से आपके लिए पेश करूंगी, मगर आज साथ में हम लेकर आए हैं नए और पुराने गीतों का संगम हर हफ्ते की तरह, और साथ में पारिवारिक विषय, छोटी छोटी बातें, अपनों के सेगमेंट और बहुत कुछ, मौसम, और बस सुनते ही रहिए. बारी बारी आपको पता ही चलेगा कि क्या क्या हम आपके लिए लेकर आज आए हुए हैं. सो आप ऑफ कोर्स सुन रहे हैं ये कार्यक्रम, और ये है एक रंगीन शाम आपके नाम, और अब देखते हैं कौन सा गीत है आपके लिए. यस ऑफ कोर्स आप एंजॉय करेंगे, मुझे पता है.

फिल्म पठान का गीत आप सुन रहे हैं। हाँ जी, दीपिका और शाहरुख खान पर फिल्माई गई ये बहुत ही एनर्जेटिक सॉन्ग। और हाँ जी, जबकि दीपिका की बात हो रही है तो आपको बता दूं, शायद आपको पता भी होगा कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के घर दूसरी बार बेटी का जन्म हुआ है। सो ये 19 सितंबर को ये बेबी आई है, बेटी, बेबी गर्ल। और पहली बेटी दुआ, जिनका जन्मदिन 8 तारीख सितंबर को हुआ था, तो कपल ने घोषणा कर दी है। और बेबी का नाम अभी मुझे तो नहीं पता है, शायद नाम रख भी दिए होंगे, मगर आपको बता दूं कि दीपिका दूसरी बार माँ बन चुकी है। एंड बहुत ही एनर्जेटिक मूवीज में भी वो काम करती है, एंड शी लुक्स रियली ग्रेट। इवन पहली बेबी के बाद भी वो बहुत ही अच्छी दिखती है। सो एनीवे, चलो एक और गीत आपके लिए पेश कर देते हैं।

0: हाँ जी, स्काई फोर्स फिल्म से ली गई ये नगमा आपके लिए। और हाँ जी, एक और नगमा सुनते हैं, ये आप भी पसंद करेंगे।
1: I'm sorry.

जी, आज की जो इंग्लिश शब्द है बच्चों के लिए और उन लोगों के लिए जो हिंदी सीख रहे हैं, तो आज का जो शब्द है वो मैं आपको बता दूं, वो है क्वीन। ठीक है, QUEEN। सो द वर्ड इज क्वीन, और आप इसकी जो हिंदी शब्द है इसे ढूंढिए, और तब तक मैं और एक और गीत आपके लिए लेकर आई हूं, आप इसे सुनते रहिए एंड देखिए वर्ड क्या है और उनके हिंदी शब्द क्या है, ढूंढिए।

0: हाँ जी, आज पारिवारिक विषय में आप सोच रहे होंगे कि कौन से टॉपिक पर हम बात करेंगे। वेल, आज आज एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, वो इट्स इन्फॉर्मेटिव, ठीक है ना। ये है कि आपको तो पता ही है कि हमारे जो जो ब्लड ग्रुप का मतलब आप समझते हो, हम ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं ना, तो AB O के बाद अब आया है नया ब्लड ग्रुप। वैज्ञानिकों ने इस बड़ी खोज को पा लिया है एंड थोड़ी देर में मैं जानकारी दूंगी आपको, ठीक है। और ये 6 बजे के बाद, अभी नहीं, 6 बजे के बाद तो ये हम जानेंगे। मगर उससे पहले आपको बता दूं कि डेलाइट सेविंग, हाँ जी, डेलाइट सेविंग की शुरुआत होने वाली है। और ये तारीख एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के लिए किन किन राज्यों में ये लागू होता है ये मैं आपको बताऊंगी। ये तारीख रविवार 4 अक्टूबर, अब बहुत दूर नहीं है ना, 4 अक्टूबर से डेलाइट सेविंग की शुरुआत हो रही है। और समय रात 2 बजे, करना क्या है आपको, घड़ियों को 1 घंटा आगे करके 3 बजे कर दिया जाएगा, ठीक है, तो ये आप नोट कीजिए। मगर ऑस्ट्रेलिया में किन राज्यों में ये लागू होता है ये इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि ये न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया, साथ साथ टेजमैनिया और ICT, इन इलाकों में ये लागू होता है। और लागू न होने वाले राज्य और क्षेत्र है क्वींसलैंड, और यानी साथ में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न टेरिटरी। यहाँ समय में कोई भी बदलाव नहीं होता है, तो अगर आप ब्रिस्बेन में सुन रहे हो तो आपको तो इट वॉन्ट अफेक्ट यू। तो ये थी ऑस्ट्रेलिया के बारे में, चलते हैं न्यूजीलैंड की ओर, तो अभी कुछ ही देर में बताएंगे, ठीक है, अभी हम बाद में आपको बताएंगे।
1: एक रंगीन शाम आपके नाम, सुनते रहिए।
0: हाँ जी, सो डेलाइट सेविंग न्यूजीलैंड में, आप सोच रहे होंगे कि न्यूजीलैंड में कब से ये डेलाइट सेविंग शुरू होने वाली है, तो हमारे लिसनर्स वर्ल्ड वाइड है, ऑफ कोर्स लोग सुन रहे हैं सभी जगह से, तो न्यूजीलैंड तारीख 27 सितंबर यानी अगले रविवार से न्यूजीलैंड में डेलाइट सेविंग की शुरुआत होती है। समय सुबह 2 बजे, आप बदलाव करिए, अपने घड़ियों को 1 घंटा आगे करेंगे आप, और ये रात 2 बजे से सीधे 3 बजे हो जाएंगी। रात कहती हूँ ना, सुबह 2 बजे से सीधे 3 बजे हो जाएंगी। तो भारत के साथ समय का अंतर, न्यूजीलैंड और भारत के बीच का अंतर 6.5 घंटे से बढ़कर 7.5 घंटे हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूजीलैंड भारत से 7.5 आवर्स आगे होगा। और डेलाइट सेविंग समाप्त कब होने वाली है, तो इसकी समाप्ति 5 अप्रैल 2026 में हो चुकी थी, और ये उस समय खत्म हुई थी। और अगली समाप्ति जो है, ये इस बार वाली समाप्ति जो होगी, तो ये 4 अप्रैल 2027 को सुबह 3 बजे समाप्त होगी, ठीक है। तो आप शायद, आपको ना पता हो तो कुछ ज़रूरी बातें आपको बता दूं। ये शाम की रोशनी, सितंबर में समय आगे होने से शाम को 1 घंटा ज़्यादा रोशनी यानी डेलाइट हमको मिलेगी, जहाँ जहाँ पर ये लागू होता है, ठीक है। तो आपके स्मार्टफोन और कंप्यूटर की घड़ी अपने आप अपडेट हो जाती है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ कुछ लोग चिंता करने लगते हैं। लेकिन अगर आपके घर में कोई मैनुअल यानी हाथ से सुई घुमाने वाली घड़ी है, तो उसे आपको 1 घंटा ज़्यादा रोशनी यानी डेलाइट हमको मिलेगी, जहाँ जहाँ पर ये लागू होता है, ठीक है। तो आपके स्मार्टफोन और कंप्यूटर की घड़ी अपने आप अपडेट हो जाती है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ कुछ लोग चिंता करने लगते हैं। लेकिन अगर आपके घर में कोई मैनुअल यानी हाथ से सुई घुमाने वाली घड़ी है, तो उसे आपको खुद सेट करना होगा।

0: स्नेहा का बॉस।
1: लगता है बॉस हमें टॉस करने वाला है।
0: अब क्या करें?
1: जो भी करेंगे एक साथ करें।
2: हाँ जी, आई दिस सी गर्ल एंड ऑफ कोर्स प्रियंका चोपड़ा पूरी धूम मचा रही है विश्व भर में, एंड बॉलीवुड से हटकर हॉलीवुड में एक कदम

0: जमा चुकी है और बहुत सारे जबरा फैंस हैं उनके। तो हम भी देखते हैं हमारे कौन कौन से फैंस हैं जो हमारे कार्यक्रम सुनते
1: गरबा रख लिया
0: हैं।
1: मेरे समझते नहीं है कभी कभी, उसे स्टार नहीं है।

जी, आप सुन रहे हैं एक रंगीन शाम आपके नाम, और ये है रेडियो ब्रिजवानी 1701 पर। हर हफ्ते आप पूरे सुनते ही रहते हैं सभी कार्यक्रम जैसे जैसे आपको मौका मिलता है ना। तो एक और बहुत ही बढ़िया न्यूज़ मुझे मेरे हाथ लगी है, और ये है इंग्लैंड से न्यूज़। और ये मधुस्मिता जीना, ये 46 ईयर ओल्ड एक स्पेशल नीड्स टीचर है स्टॉकपोर्ट इंग्लैंड से। और इन्होंने एक्चुअली 2008 से दौड़ लगाने की शुरुआत की, जस्ट मंथ्स आफ्टर उनकी जो पहला बच्चा के जन्म हुआ। तो घर से बाहर निकलने के लिए उन्होंने अपने माइंड को भी क्लियर करने के लिए एक ये दौड़ लगाना शुरू की, यू नो, जस्ट टू गेट हरसेल्फ फ्रेशन अप एंड ऑल दैट। सो कई सालों से 2008 से ये दौड़ रही थी, एंड धीरे धीरे ये इनकी पैशन बन गई। और ये पैशन ऐसा हुआ कि इन्होंने डिसाइड किया कि चलो कुछ अलग करते हैं जो पहले ये नहीं करती थी। तो धीरे धीरे ये मैराथन्स में भाग लेने लगी, और वो भी आप घबरा जाएंगे कि इंडियन साड़ी पहनकर, ट्रेडिशनल इंडियन साड़ी पहनकर ये दौड़ लगाती थी मैराथन्स में, इमेजिन दैट, और इंग्लैंड में। तो टू रिप्रेजेंट है कल्चर अपने, और अन्य लेडीज को, भारतीय लेडीज को दिखाना था उनको कि भाई आप किसी भी तरह से, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, आप उसी तरह से कई कार्य कर सकती हो। जब ये मैराथन में भाग ले सकती है, तो वैसे तो लेडीज साड़ीज में बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। मैं कहती हूँ कि साड़ीज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, एंड जब भारतीय महिलाएं पहनती हैं तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। और आजकल तो यूरोपियन लेडीज भी ये साड़ीज पहनते हैं। दिवाली में जाइए, कहीं शादी, किसी इंडियन के घर पे शादी हो, तो ये लोग पहन कर आते हैं, एंड दे लुक एब्सोल्युटली गॉर्जियस। एनीवे, सो 2026 मैनचेस्टर मैराथन में मधुस्मिता बिगेस्ट चैलेंज ली अपने लाइफ की, और येट ब्रेकिंग द गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड। और ये किस लिए? फास्टेस्ट मैराथन रनर इन अ सारी। वाव, इजंट दैट अमेजिंग। शी कंप्लीटेड 42.2 किलोमीटर्स इन जस्ट 3 hours and 45 minutes। है ना अमेजिंग बात? या सो इन्होंने प्रीवियस रिकॉर्ड को तोड़ दी लगभग 12 मिनट से। सो इजंट दैट अमेजिंग? सो देखिए, जब आपको कभी भी मौका मिले, कहीं भी आप जा रही हो, तो साड़ी जरूर पहनिए। भारतीय महिलाएं तो बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं साड़ीज में। चलो एक और गीत सुनते हैं। आप सोच रही हो ये क्या बोल रही है, क्यों नहीं, यू मस्ट बी प्राउड, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर कल्चर।

0: जी, फिल्म दिलवाले से ली गई है नगमा, शाहरुख खान, काजोल, वरुण और कृति पर फिल्माई गई ये सॉन्ग। एंड हाँ जी, छोटी छोटी बातें अपनों की आपको इंतजार रहती है ना, मुझे भी सुनिए।
1: याद रखिएगा कि जो अच्छे लोग हैं,
0: हाँ जी,
1: साफ दिल के लोग हैं, सच्चे लोग हैं। एक बात याद रखिएगा कि जो अच्छे लोग हैं, साफ दिल के लोग हैं, सच्चे लोग हैं, खरे लोग हैं, जब उनके साथ आप ज्यादती करते हैं, उनको हर्ट करते हैं, तो ऐसे लोग फिर अपना बदला नहीं लेते, रिवेंज नहीं लेते वो अपना, वो आगे से आपको जवाब नहीं देते, खामोश हो जाते हैं और आपकी जिंदगी से वॉकआउट कर जाते हैं, सिर्फ ये सोचते हुए कि मेरे साथ हुई इस ज्यादती का हिसाब मैं नहीं वो लेगा। बिलीव मी, इट्स हैपन, सो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम इफ यू हर्ट समबडी। अगे तुहाडी मर्जी।
2: अगर आपके टीम में दो लोग हैं,
0: हाँ जी, सो आई होप इससे कुछ हम सभी को समझ मिला। हाँ जी, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। गोलमाल 3 का ये नगमा

हाँ जी, मगर अपने हद में रहकर। हाँ, जिए तो एक पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। देखिए, जीवन की रियलिटी क्या है, मैं आपको ये बताती हूँ। हाँ, कभी अस्पताल की भीड़ में जाकर देखना, जिंदगी की कीमत समझ में आ जाएगी। ठीक है, कभी अस्पताल में जाकर देखना तो आपको अपनी जिंदगी की कीमत समझ आ जाएगी। पैसा, घमंड और ये छोटी सी नाराजगी, सब कितनी बेकार नजर आएगी आपको, कितनी बेकार। आप कितने लाचार हो सकते हो। वहां कोई सांसों के लिए दुआ करता है, कोई अपनों के लौट आने की राह तकता है, किसी की आंखों में डर दिखाई देता है तो कोई हर धड़कन के लिए शुक्र मनाता है। किससे क्या मिला, किसने क्या छीन लिया, इन बातों में अपना आज मत गवाना। जो मिला है उसे दिल से जी लेना, हर छोटी खुशी को मुस्कुराकर अपनाना। ठीक है, क्योंकि अस्पताल की दीवारें यही सिखाती है, जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। याद रखिए, जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ना पैसा, ना अहंकार, ना कोई शिकायत, बस सांसें चलती रहे, इससे बड़ी दौलत कोई नहीं है। ठीक है, तो इसे आप जरूर याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी हमें समझ में नहीं आती है ना, तो ये समझना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो ये है जीवन की हकीकत, यानी जीवन की क्या बोलते हैं, रियलिटी। हाँ, सो एनीवे, नए और पुराने गीतों का संगम है। और क्या आपके लिए पेश करूं, देखती हूँ। ठीक है, चलो ये सुनते हैं। होले होले, अगर आप रास्ते पे हो तो होले होले आइए, जिंदगी बहुत ही प्रेशस है, कहीं ऐसा ना हो किसी खाई में हो जाया, ऐसा मत करना।

कहते हैं ना कि जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, ठीक है, और अपने आप में हमेशा, हाँ जी, हमेशा विश्वास होना चाहिए। और जीवन में खुशियों की कमी नहीं है दोस्तों, बस खुशियों को मनाने का जो अंदाज है ये होना चाहिए। सो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो एक और गीत हम सुनते हैं, फिर उसके बाद पारिवारिक विषय जैसे हमने कहा, और ए बी और ओ के बाद अब आया नया ब्लड ग्रुप, तो इसे हम जानेंगे कुछ ही देर में।

बहुत ही प्यारा सा ये नगमा, एंड आई होप यू हैव एंजॉयड इट। और बस अब हम चलेंगे। वैसे तो मौसम की बात क्या करूं, हाँ जी, ब्रिस्बेन में आज लगभग 30 डिग्री तक, ठीक है, कल लगभग 29 आई गेस, बट देखिए फिर भी एंजॉय कीजिए। अभी तो विंटर से निकले हुए हैं एंड स्प्रिंग है अभी भी, एंड बट एंजॉय। एंड अभी फूल पत्ते सभी कुछ खिलखिला रहे होंगे, एंड अपने जो क्या बोलते हैं, इट्स दिस इज वेरी ब्यूटीफुल सीजन, बहुत ही कलरफुल, ठीक है, जस्ट एंजॉय दैट। हाँ जी, तो अब हम चलते हैं पारिवारिक विषय की ओर। तो जैसे हमने कहा कि आज इट्स मुझे पता नहीं आपको पता है या नहीं कि आपके ब्लड ग्रुप क्या है, आपको पता है या नहीं कि आपकी ब्लड ग्रुप क्या है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ए बी और ओ के बाद अब आया नया ब्लड ग्रुप। तो साइंटिस्ट ने की एक बहुत बड़ी खोज एंड इट्स अमेजिंग। क्या आपका ब्लड ग्रुप भी अलग है? तो जानिए ए और ओ के बाद आया नया जामा, JAMA, ये ग्रुप का पूरा सच है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि क्या, देखिए सभी लोग नहीं जान पाते हैं कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है, मगर अपना ब्लड ग्रुप जानना बेहद इम्पॉर्टेंट है। क्या आप जानते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो ज़्यादातर लोग AB और O ग्रुप के बारे में ही जानते हैं, लेकिन अब मेडिकल साइंस की दुनिया में एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। साइंटिस्ट ने इंसानों में एक बिल्कुल नई ब्लड ग्रुप की खोज कर ली है। जी हाँ, ब्रिटेन और इजराइल के साइंटिस्ट ने मिलकर एक नए ब्लड ग्रुप सिस्टम का पता लगाया है, जिसका नाम, जैसे हमने पहले कहा, जामा JAMA रखा गया है। और खास बात तो ये है कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ने इसे आधिकारिक तौर पर इंसानों का 49th ब्लड ग्रुप सिस्टम मान लिया है। बहुत ज्यादा है ना। आइए बहुत ही आसान भाषा में जानते हैं कि आखिर ये नया ब्लड ग्रुप क्या है और इससे मरीजों को क्या फायदा मिलेगा, कैसे हुई इस नई नई ब्लड ग्रुप है इसकी खोज, आप सोच रहे होंगे। तो ये दिलचस्प कहानी शुरू हुई है एक इजरायली महिला और उसके भाई से। साइंटिस्ट ने जब इन दोनों के खून के सैंपल, यानी उनके जो ब्लड सैंपल है, इसकी जांच की, तो उन्होंने पाया कि इसमें कुछ बेहद अजीब एंटीबॉडीज मिले। जब इस मामले की गहराई से रिसर्च की गई तो पता चला कि ये मामला आम ब्लड ग्रुप से बिल्कुल अलग है। तो साइंटिस्ट ने पाया, क्या पाया, उन्होंने पाया कि हमारे शरीर में F11R नाम का एक जीन, जो जीन्स हम कहते हैं, ये होता है जिससे जामा प्रोटीन बनता है, और इन भाई बहन के शरीर में इसी जीन और प्रोटीन के अंदर कुछ खास जेनेटिक पाए गए हैं, ठीक है, जो चेंज पाए गए हैं। तो उन्हें कुछ अलग सा लगा, और इस स्थिति वाले लोगों में के खून में वे आम एंटीजन नहीं होते हैं जो बाकी लोगों में पाए जाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि गलत खून चढ़ाने का खतरा होगा खत्म क्या? तो ये खोज मेडिकल की दुनिया में एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। परेशानी ये थी कि ऐसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप वाले लोगों को अगर कभी आम लोगों वाला खून चढ़ाया जाए तो उनका शरीर बहुत खतरनाक रिएक्शन दे सकता है। तो कई बार ये स्थिति मरीज के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। आप देखा भी होगा, सुना भी होगा कि ऐसा होता है, जानलेवा साबित हो सकती है। और अब साइंटिस्ट की इस नई खोज और DNA टेस्ट की मदद से डॉक्टर्स पहले ही ये पता लगा सकेंगे कि किस मरीज या डोनर का ब्लड ग्रुप जामा है। इससे अस्पताल में खून चढ़ाने के दौरान होने वाली बड़ी गलतियों और खतरों को आसानी से रोका जा सकता है या रोका जाएगा, ठीक है। और जिन लोगों का ब्लड ग्रुप बहुत दुर्लभ है उनका इलाज अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित
और सटीक हो जाएगा। तो देखिए, चलो एक गीत सुनते हैं, फिर बाद में मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या आपका भी ब्लड ग्रुप जीरो प्लस है, तो ये पांच खासियत आपको दूसरों से बनाती है अलग, जानेंगे कैसे हटकर आप। तो चलो एक और गीत सुनते हैं, फिर थोड़ा ब्रेक लेते हैं ना, इट्स इम्पोर्टेंट। सो सुनते हैं ये नगमा, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये किशोरदा की आवाज में। मुझे पता है आपको मालूम ही चल गया होगा, पता चल गया होगा कौन से गीत है ये, बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है।

हाँ जी, ऋषि कपूर पर फिल्माई गई ये नगमा और किशोरदा की आवाज में आप सुन रहे थे। और हाँ जी, तो जैसे हमने पहले कहा कि आप सुन रहे हैं पारिवारिक विषय, और मैं आपको बताने जा रही हूं कि अगर आपका ब्लड ग्रुप है 0+, तो ये 5 खासियत आपको दूसरों से बनाती है अलग। तो जानते हैं कि कैसे हटकर आप अलग है। तो हम सभी का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, ये तो आप जानते ही हैं, और ये हमारी फिजिकल स्पेशलिटी और सेहत पर असर डाल सकता है, ठीक है, जिस भी ब्लड ग्रुप से हम हैं। तो अलग अलग ब्लड ग्रुप के अपने अपने फायदे और कमियां होती है। आज हम बातें करेंगे 0+ ब्लड ग्रुप के बारे में, जो दुनिया भर में सबसे आम है, सबसे कॉमन है। 0+ ब्लड ग्रुप के लोगों में कुछ विशेष गुण होते हैं, ठीक है, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। अगर आप 0+ यानी O+ ब्लड ग्रुप में है, तो आप उन ऐसे लोगों में शामिल है, जैसे हमने कहा, कि जो बहुत ही अलग है। और अलग कैसे हैं? इस ग्रुप के लोग अपने पॉजिटिव नेचर, एक्टिव लाइफस्टाइल, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं उनका, और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। कैन यू बिलीव इट? उनकी ये खासियतें जो होती हैं, ना सिर्फ फिजिकली हेल्थी बनाती है उन्हें, मगर मेंटली और इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। सो देखिए, अगर आप इस ग्रुप से हैं, तो आप जरूर जरूर हटकर ही है ना। सो एनीवे, बहुत ही बढ़िया गीत अभी आप सुन रहे थे, और चलो, ये जमी गा रही है, आसमां गा रही है, ठीक है, ये गीत हम सुनते हैं क्योंकि स्प्रिंग का मौसम है। ऑफ कोर्स जमी गा रही है, मगर ब्रिस्बेन में तो मुझे पता है गर्मी बहुत है, बारिश अभी नहीं आ रही है, बहुत दिनों से नहीं आई है, पेड़ पौधों को भी पानी चाहिए ना, तो आप गार्डन वाटर करते ही रहिए।

हाँ जी, अगर अभी भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हो तो आपका करती हूँ मैं तहे दिल से स्वागत, ठीक है। सो एक और बहुत ही बढ़िया सा गीत मुझे बहुत पसंद है।

तहे दिल से आपको कार्यक्रम में शामिल कर रही हूँ और कहती हूँ हैप्पी हैप्पी बर्थडे आपको। आपकी आयु लंबी हो, आप अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीते ही रहे। एंड अगर आपका वेडिंग एनिवर्सरी है आज या किसी तरह से आप सेलिब्रेट कर रहे हो तो आपको बहुत सारा ब्लेसिंग्स मिले एंड आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ एक बढ़िया हंसी खुशी हैप्पी हैप्पी लाइफ जिए, ठीक है। एंड हाँ जी, अगला गीत जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, मगर याद रखिए आज का जो शब्द है वो है क्वीन, राइट, QUEN। और बहुत ही जल्द मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी, मगर अभी अभी तो जो अगला गीत आपके लिए लेकर आई हूँ, एंड मुझे पता है आप सभी सुन रहे हैं मगर मेरे तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, मगर कोई बात नहीं, एंड होपफुली यू आर एन्जॉइंग द सॉन्ग्स दैट आई एम एबल टू, जो मैं परोस रही हूँ आपके लिए, आप उसे एन्जॉय कर रहे होंगे। सदाबहार गाने, बस डिफरेंट मूड्स, डिफरेंट सेंटिमेंट्स को लेकर हर गीत में आपके लिए चुन कर लाती हूँ। और अगला गीत जो आपके लिए लेकर आई हूँ वो 1960s की हिंदी क्लासिक सॉन्ग है, जिसे हमने फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से आपके लिए लेकर आई हूँ। और ये गीत एक्चुअली लता जी ने गाई है ये सॉन्ग। सो आई होप यू विल एंजॉय इट।

जी, बहुत ही बढ़िया सा ये नगमा। और देखिए, अगर आप किसी कारणवश दुखित अवस्था में है तो भी हम यहाँ से आपको याद कर रहे हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम से शायद आपको कुछ राहत मिले। तो यही मेरी आशा है। यही मैं आशा कर रही हूँ। देखिए, अब अगला गीत जो हम लेकर आए हैं आपके लिए, ये एक्चुअली ये सिनेमा के सुनहरे दौर का एक बहुत ही सदाबहार और बेहद सुरीला गीत है। ठीक है, ये गाना जो है ये साल 1968 में आई रोमांटिक ड्रामा फिल्म अभिलाषा का है, और प्राकृतिक सुंदरता और गहरे प्रेम की फीलिंग वाले इस गीत का भारतीय संगीत इतिहास में एक विशेष स्थान है। ठीक है, तो गीत पेश करने से पहले मैं आपको उस दौर में ले जाना चाहती हूँ, उस दौर की याद दिलाती हूँ जब हिंदी सिनेमा में कश्मीर और हिमाचल की खूबसूरत वादियों में गानों की शूटिंग की जाती थी। ठीक है, तो ये जो नगमा है ये आरडी बर्मन की शुरुआती करियर 1960 के दशक में, आरडी बर्मन बॉलीवुड में अपनी पहचान बना रहे थे। तो मुझे पता है आप जो गीत के बोल है आपको याद आ ही गया होगा, और वो है वादियां मेरा दामन। वादियां मेरा दामन में उन्होंने पारंपरिक वादियों और पहाड़ों की जो एको इफेक्ट है कि बेहतरीन इस्तेमाल किया, जिसने गाने को एक जादुई और गहरा एहसास भी दिया था। तो ये गीत उनके शुरुआती करियर में सबसे स्पेशल और सुरीले कंपोजिशन में से एक रहा। ठीक है, तो ये गीत खास तौर से आज एक फरमाइश आई है हमारे पास, और ये है विशाल मेहता जी की ओर से। सो विशाल जी, आप कार्यक्रम हर हफ्ते सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं, हमारा साथ देते हैं, आपके फैमिली साथ देती है। सो इसके लिए थैंक यू, आपने फीडबैक दी है एंजेला जी को, एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। सो थैंक यू सो मच। तो चलो, आप ही का फरमाइशी गीत हम आपके लिए पेश करते हैं। सो आई होप यू आर लिसनिंग।

0: बहुत ही बढ़िया गीत। जी फिल्म अभिलाषा से ली गई 1968 की ये फिल्म ये गीत और इस 1968 की फिल्म मुझे कहना चाहिए और गायक मोहम्मद रफी जी और लता मंगेशकर एंड ऑफ कोर्स ये जो जो संगीतकार इसमें आरडी वर्मन जी यानी पंचमदा और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और कलाकार संजय खान और नंदा पर फिल्म आई गई। ठीक है, और खास तौर से इसे आज फरमाइश के तौर पे हमारे पास भेजा गया या पहली बार किसी ने फरमाइश भेज रखी है हमारे पास। सो थैंक यू सो मच विशाल जी एंड एंजेला जी, थैंक यू। आपने कहा कि विशाल जी ड्राइव कर रहे हैं और कार्यक्रम सुन रहे हैं, सेफ ड्राइव आपको। हाँ जी, सो चलते हैं, छोटे सा ब्रेक लेते हैं और अपने स्पॉन्सर्स का संदेश हम कैसे भूल सकते हैं ना, सो इसे सुनते हैं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
0: हाँ जी, तो कई हमारे पास स्पॉन्सर्स रेडियो ब्रिजवानी के पास स्पॉन्सर्स आते ही रहते हैं। आप भी याद रखिए कि अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं कोई एक प्रोग्राम खास तौर से या फिर आप अपने एडवर्टीजमेंट कराना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो आपको याद है ना कहाँ आपको जाना है। सो आप एंजेला को फोन कीजिए।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
3: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं, दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
3: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
4: Sending a Digicel top up to loved ones in Fiji is super easy. Keval apne nearest dairy, supermarket or petrol station pahunchiye aur kharidiye 10, 20, 30 ya $50 top up. Aap website www.digicelinternational.com visit bhi kar sakte hain. Digicel top up apne family ko Fiji dene ke liye. Paisa bhejne ke liye our partner Click Express Pick is the easiest way to send money to Digicel Fiji. Keval aap को रजिस्टर होना है एट www.clickexpresspic.com पर। डिजिसेल, वी आर बेटर टुगेदर।
5: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप,
6: बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
0: हाँ जी, देखिए मैं तो आपको बताना भूल ही गई कि फ्राइडे को हम लोग एक ऐसे मूवी देखने गए जो मैं देखती ही रह गई, दंग रह गई देखकर। और हनुमान अंश याद है आपको, सुना है आपने? ये नीम करौली बाबा पर बनी फिल्म हनुमान अंश को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है, बहुत सारा प्यार मिल रहा है। जहां दायरा और जो वाइब कहते हैं ना, उसका जो वाइब है, इसको भक्ति फिल्म आप कह सकते हो। ये 44 डेज में इन्होंने इतना सारा पैसा कमा लिया है, ढेर लोग इसे देखने जा रहे हैं। एंड आपने अगर नहीं देखा है तो मैं कहूंगी कि जरूर जाकर देखिए, क्योंकि बॉलीवुड के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड दर्ज कर दिया है, जिसके चलते इतने आपको याद होगा 2024 में आई एक फिल्म महाअवतार नरसिम्हा को पछाड़ दिया है ये, और सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली फिल्म बन गई है। सो इसी के साथ 300 करोड़ कमाने वाली फिल्म, भक्ति फिल्म हनुमान अंश ने नया रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है। सो जरूर देखिए, अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप जरूर देखिए। और हाँ जी, देखिए मुझे पता है आप हर रविवार को हमारा साथ देते हो, मगर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि चंद हफ्तों के लिए मैं देश से बाहर रहूंगी और आपका साथ नहीं दे पाऊंगी। सो मुझे भी, मैं मिस करूंगी ऑब्वियसली, अपने सभी लिसनर्स को मिस करूंगी, एंड उम्मीद है आप भी थोड़ा थोड़ा मिस जरूर करोगे मुझे। खैर चलो, मैं आपको बताती हूँ, आने वाले जो 27 सितंबर को मैं नहीं रहूंगी, फिर उसके बाद 4 अक्टूबर को नहीं रहूंगी, फिर 11 को नहीं रहूंगी और 18 अक्टूबर को नहीं रहूंगी, मगर उसके बाद 25 अक्टूबर जो है मैं जरूर आपके साथ आने की भरसक कोशिश करूंगी। वादा नहीं कर रही हूं, मगर मैं प्लान कर रही हूं 25 अक्टूबर को जरूर, अगर सब कुछ ठीक रहा तो जरूर आपका साथ मैं दूंगी, और आप भी मेरा साथ इसी तरह दीजिए, ठीक है? तो चलो, मुझे लगता है कि शायद ये हमारे लिए आखिरी गीत है इस हफ्ते के लिए, और जब तक मैं वापस नहीं आऊं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, औरों को खुश रहने का मौका जरूर दीजिए, ठीक है? सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आपके साथ मैं जुड़ जाती हूँ, ठीक है? सो बी हैप्पी। हाँ जी, दुआ में जरूर याद रखिए,
7: मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना।
0: ओ हाँ जी, जो वर्ड क्वीन था ना, क्वीन को रानी बोलते हैं। टाइम कुछ कम है, सॉरी। हाँ

हाँ जी, सफर खत्म हो जाता है लेकिन जिंदगी यादों में सिमट कर रह जाती है, वो चलती रहती है आज भी कल भी। शशि जोखन का प्यार भरा नमस्कार एंड ओवर एंड आउट।

वीकेंड्स आते ही सबसे पहला ख्याल ये आता है कि इन वीकेंड्स को गुजारा कैसे जाए, और जब वीकेंड्स गुजर रहे होते हैं तो ये ख्याल आता है कि यार कोई होता जो हमारे लिए कम से कम हमारी पसंद के गाने प्ले कर देता। तो देखिए भाई, अपने वीकेंड्स को कैसे गुजारना है ये डिसाइड तो आपको करना है, लेकिन आपका जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है ना कि कोई होता जो हमारे लिए गाने प्ले कर देता, तो हम है ना आपके लिए आपकी पसंद के गानों के साथ एक बार फिर से सताक्षी हाजिर है रेडियो प्रिस्वानी 1701 एम पर। मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट पहुंच चुकी हैं, और जिनकी नहीं पहुंची आप हमें लिख सकते हैं हमारे रेडियो प्रिस्वानी के फेसबुक पेज या फिर वेबसाइट पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी और आपकी फरमाइशों का सिलसिला इस अगले ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड, रेडियो प्रिस्वानी, सताक्षी के साथ सुनते रहिए फरमाइशी गीत।

फरमाइशी गीत आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ आपके अपने रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर। आइए फरमाइशी गीतों में लेते हैं आज की पहली फरमाइश जो हमें की है मेलबर्न से अमित जी ने, और आप लिखते हैं कि सताक्षी देवानंद के गाने सदा बहार हैं और देवानंद मेरे बहुत ही फेवरेट रहे हैं। मुझे नहीं याद कि मैंने उनकी कोई भी फिल्म मिस की हो जब भी टीवी पर आती है। इनफैक्ट आज भी मैं उनकी फिल्मों को देखने बैठ जाता हूँ, तो मुझे आज वो गाना सुनना है जो मुझे मेरे कॉलेज के दिनों की याद दिला देता है। प्लीज मेरे लिए प्ले कर दीजिए पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। मुझे याद है कि साइकिल पर घूमते हुए मैं और मेरे दोस्त यही गाना गाया करते थे। यानी आप लड़कियों को परेशान किया करते थे मुझे। खैर कोई बात नहीं, आपके लिए हम ये गाना जरूर प्ले करेंगे, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। बहुत ही खूबसूरत गाना देवानंद साहब का, सुनिए और मेरे साथ सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी। आप सुन रहे हैं फरमाइशी।

0: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।
1: फरमाइशी गीत आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्बानी 1701 एम पर। जी हां, फरमाइशी गीतों में हम प्ले कर रहे हैं आपके लिए वो गाने जो आपकी पसंद के हैं और इस वक्त आप हमारे साथ सुनना चाहते हैं। अगली फरमाइश किसकी है बताऊंगी आपको, लेकिन अगले गाने को सुनने से पहले मेरा ये गाना सुनिए एंड बने रहिए रेडियो ब्रिस्बानी पर और एंजॉय करते रहिए अपने वीकेंड्स को, अपने संडे को मेरे साथ।

0: से।
1: देखिए, गजल्स की अपनी अलग ही बात होती है और इसीलिए सताक्षी आपके लिए शाम में गजल को लेकर आती है। और आज गजलों की फरमाइश कर दी है हमें नेहा ने, आपने हमें लिखा है डेल्टा बीसी से। और आप लिखती हैं कि सताक्षी, हफ्ते भर की भाग दौड़ के बाद जगजीत सिंह जी की आवाज बहुत सुकून देती है, तो प्लीज मेरे लिए जगजीत सिंह की वो गजल प्ले कर दीजिए ना, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे। आए हाय, बहुत ही प्यारी गजल है ये तुम्बिन की जगजीत सिंह साहब की आवाज में नेहा जी, और आपके लिए ये गजल प्ले करना मतलब खुद के लिए प्ले करना है। तो चलिए इस गजल को अभी मैं सीधे हम सब के दिलों के नाम करती हूँ। इंजॉय कीजिए रेडियो प्रस्वानी पर फरमाइशी गीत में कोई फरियाद, और सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी सताक्षी के साथ।

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।
1: आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्बेन पर। फरमाइशी गीतों में अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमें बताइए वो कौन से गाने हैं या वो कौन सी फरमाइशें हैं जो इस वक्त आप रेडियो ब्रिस्बेन पर सताक्षी के साथ सुनना चाहते हैं। मैं आपको लेकर चलती हूँ फिलहाल इस अगले ट्रैक के साथ आगे। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्बेन 107.1।

अच्छा सच्ची सच्ची एक बात बताइएगा, 90s के गानों की बात कुछ और थी कि नहीं थी, है ना? रिवाइंड करते करते कैसेट सुनना और पेन की रील से उसको लपेटना बड़ा ही अजीब हुआ करता था और बड़ा ही मजेदार हुआ करता था। और ये बात मैं आपसे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास है 90s के गाने की फरमाइश, और ये की है राहुल ने ब्रिस्बेन से। आप लिखते हैं कि सताक्षी, कुमार सानू और अलका याग्निक का एक आइकॉनिक ड्यूट हुआ करता था और मैं और मेरी गर्लफ्रेंड इस ड्यूट को एंजॉय किया करते थे। तो भाई आज हमारे लिए उसी ड्यूट्स को एक बार फिर से प्ले कर दीजिए ना, उस गाने को प्ले कर दीजिए जो मैं उसके लिए अक्सर गाया करता था। और घबराइए नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड ही इस वक्त मेरी वाइफ है, तो मैं बिंदास उस गाने को सुन सकता हूँ। ये भाई बड़ी अच्छी बात कह दी आपने कि भाई गर्लफ्रेंड ही वाइफ है तो आप बिंदास उस गाने को सुन सकते हैं। तो सुनिए भी, और उनके लिए भी हम ये गाना प्ले करते हैं। आप साजन से सुनना चाहते हैं, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। तो बस इसी गाने को आपके लिए प्ले कर रही हूँ, एंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी। आप सुन रहे हैं फरमाइशी।

0: खुश रहो।
1: तो भाई अगला मेल हमारे पास में किसका है, और ये है रिया का। आपने हमें लिखा है जयपुर इंडिया से, और आप कहती है कि सताक्षी 80s और 90s का वो दौर मुझे अक्सर याद आता है जब इंडी पॉप का क्रेज सबके सर चढ़कर बोल रहा था। फिर चाहे अलीशा चुनॉय हो, लकी अली हो, सिल्क रूट हो, मोहित चौहान हो, इन सबके एल्बम ट्रैक्स की एक अलग ही दुनिया थी। और इसी दुनिया में राज किया इन सबके बीच में आके अल्ताफ रजा ने। जब उनका तुम तो ठहरे परदेसी रिलीज हुआ तो ऐसा लगा जैसे बस अब दिल को यही तो सुनना था। मुझे याद है हर दूसरे घर से इसी कैसेट के गाने बजा करते थे। तो आज यादों को ताजा करते हैं, चलिए तुम तो ठहरे परदेसी मेरे लिए फिर से प्ले कर दीजिए। रिया, सच में आपने सही कहा कि चाहे ऑटो हो, बस हो, कोई गेट टुगेदर हो, तुम तो ठहरे परदेसी हर जगह सुनाई दे जाता था। और यही तो रीजन है कि अगर इंडिया की बात करूं तो लाखों एल्बम्स इसके बिक गए थे और अल्ताफ रजा रातों रात स्टार बन गए थे। चलिए तुम तो ठहरे परदेसी, जी हाँ बिल्कुल, इस गाने को सुनते हैं यहाँ पर बिना बात किए। हमारे साथ सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी, आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीत।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवें घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों इलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड
1: गवर्नमेंट। आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्बानी 1701 एम पर। आपके साथ सताक्षी है और आपके लिए कुछ ऐसे गाने प्ले कर रही हूँ जो आपके वीकेंड्स को, इनफैक्ट आज के संडे को आपके लिए बहुत ही खास बना रहे हैं। एक अगले ट्रैक को मेरे साथ एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए फरमाइशी गीत।

प्यार में कभी खुशी मिलती है तो कभी थोड़ी सी खलिश भी रह जाती है, और जब दिल थोड़ा उदास हो तो दर्द भरे गाने हमारे सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और ऐसे ही एक गाने को अभी रोहित हमसे सुनना चाहते हैं। आप कहते हैं कि सताक्षी, जब दिल टूटता है तो पता नहीं क्यों बॉलीवुड याद आता है। आज मेरा दिल टूटा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उदास जरूर है, और बस दिल कर रहा है फिल्म दिल है कि मानता नहीं के गाने को सुनने का। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और, प्लीज मेरे लिए गाना प्ले कर दीजिए। भाई रोहित, ये मामला सिर्फ उदासी का नहीं, ये तो दिल का लग रहा है, लेकिन चलिए बहुत ही प्यारा गाना आपने पसंद किया है। तू प्यार है किसी और का, आपकी उदासी और आपकी मोहब्बत दोनों के नाम प्ले करते हैं इसे। हमारे साथ सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी, और सुनते रहिए फरमाइशी।

इंडिया से आई है मेरे पास ये अगली मेल जो मैं आपके लिए लेने जा रही हूँ, और पुणे से मुझे भेजा है अशोक गहलावत ने ये अगला मैसेज, और आप लिखते हैं कि रेडियो प्रसवानी के सभी शोज में बहुत इंजॉय करता हूँ और सभी शोज हैं भी बहुत प्यारे, और यहाँ इतनी दूर भी ब्रिस्बेन से यहाँ इंडिया में भी इसका जो साउंड है वो बहुत ही क्लियर आता है, नेटवर्क बहुत ही क्लियर आता है, तो बड़ा ही अच्छा लगता है जब हम दूर देश के शोज में अपने ही गाने सुनते हैं, और इसलिए रेडियो ब्रिस्बेन मेरा बहुत ही फेवरेट है। मैं कई प्रोग्राम्स जब भी फ्री होता हूँ तो इंजॉय करता हूँ। आज मैं बेसिकली सुनना चाहता हूँ दिव्या भारती का एक गाना फिल्म दीवाना से, पायलिया। ये गाना मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि दिव्या भारती मेरी बहुत ही फेवरेट एक्ट्रेस थी, वो बहुत जल्दी इस दुनिया से चली गई, और उनकी याद जब भी आती है तो उनके कुछ सुपरहिट फिल्मों के गाने याद आ जाते हैं, तो जरूर ये गाना अगर हो सके तो उनकी याद में प्ले कीजिएगा। अशोक जी, दिव्या भारती हम सबकी बहुत ही फेवरेट थी, और निश्चित तौर पे वो बहुत ही जल्दी इस दुनिया से चली गई, उन्हें बहुत काम करना था, बट कहते हैं ना कि जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में होती है बाबू मोशाय, हम कुछ कर नहीं सकते। सो वो जहां भी हो, बस उम्मीद करते हैं कि उनका सोल सही होगा और अच्छे से होगा। उनका काम इतना बेहतरीन है कि उनके फैंस उन्हें कभी भूल ही नहीं पाए, इतने कम फिल्मों के जरिए भी उन्होंने एक खास जगह बनाई हम सबके दिल में। सो चलिए दीवाना फिल्म से आपको सुनवाते हैं पायलिया, यहाँ पर दिव्या भारती की याद में, और हम सब भी उन्हें मिस करते हैं, याद करते हैं। एंजॉय कीजिए अगला ट्रैक और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन, सताक्षी है आपके साथ।

0: विच हर साल जंगला विच अग लगदी है। ऐ तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: और इस सफर में आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ कई ऐसे गाने जो सुपर हिट हैं, लेकिन वो और भी हिट हो गए हैं इसलिए क्योंकि आपने इस वक्त उन्हें सुनना चाहा है। एक और गाने को सुनवाने से पहले मेरी पसंद के एक गाने को एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी। और हाँ, अगर अभी तक आपने अपनी मेल्स हमारे साथ शेयर नहीं की है तो भाई हमें जल्दी से लिख भेजिए। ये अगला ट्रैक है आपके लिए। Keep listening to Radio Brisbane 1701 AM, आपके साथ है सताक्षी।

शशि की मेरे पास है अगली मेल और आपने हमें लिखा है ऑकलैंड से। शशि कहती हैं कि ये दूसरी मेल है सताक्षी और बहुत खूबसूरत शो है ये जिस पर अपनी पसंद के गानों को हम रिक्वेस्ट कर पा रहे हैं। वैसे सभी प्रोग्राम्स मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ और बहुत ही मजेदार हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो प्लीज ये प्रोग्राम जो है इनका लेवल यूं ही बनाए रखिएगा, इनमें कोई कमी मत आने दीजिएगा। बिल्कुल शशि, हम हर रोज कोशिश करते हैं कि वो लेवल मेंटेन रहे और आपको हम फुल ऑन एंटरटेनमेंट दे सकें। वैसे आप सुनना चाहती हैं फाल्गुनी पाठक का याद पिया की आने लगी। आपका कहना है कि 90s में ये गाना जो है ये एल्बम सॉन्ग था और हम सब इस गाने पर डांस किया करते थे, तो आज भी ये गाना बहुत सारी यादों से जुड़ा है, तो प्लीज इस गाने को हमारे लिए प्ले कर दीजिए। चलिए शशि, आपके नाम खास ये ट्रैक है, इसे एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रेसवानी।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: ब्रिस्बेन से ही है मेरे पास अगला मेल, और आपने लिखा है सुनीता और राजवीर, दोनों ने हमें आज मेल किया है। और आप लिखते हैं कि सताक्षी, आज हमारी 25th मैरिज एनिवर्सरी है और हम वो गाना सुनना चाहते हैं जो हमने अक्सर साथ में गुनगुनाया है। तो 25th एनिवर्सरी पर प्लीज मेरे लिए श्री 420 से प्ले कर दीजिए मन्ना डे और लता मंगेशकर जी की आवाज में प्यार हुआ इकरार हुआ है। आए है, बड़ा ही प्यारा गाना है यार। मतलब ये वो गाने हैं ना जो सदियों तक याद रहते हैं, और जब मोहब्बत सदियों की हो तो ये गाने और खास हो ही जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप दोनों को मैरिज एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी जिंदगी यूं ही आबाद रहे एक दूसरे के साथ। और भाई, वेडिंग गिफ्ट आपने मांगा है इस गाने के रूप में, तो हम कैसे ना प्ले करें। आइए प्ले करते हैं श्री 420 से प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्वानी सताक्षी के साथ, एंजॉय करते रहिए फरमाइशी की।

वेल फ्रेंड्स, ये था आज की फरमाइशों का सफर जिसे हम लेकर आए थे आपके लिए फरमाइशी गीतों में। कुछ और फरमाइशों और गहरी बातों के साथ फिर से होगी आपसे एक और मुलाकात। आज के सफर से अब लूंगी विदा। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, जिंदगी को जीते रहिए। हैव अ ग्रेट वीकेंड।

ये कैसा नशा है, मैं किस खुमार में हूँ। तू आकर भी जा चुका है और मैं इंतजार में हूँ। आदाब नमस्कार जनाब, मैं तो बस अभी भी आया हूँ, आप किसका इंतजार कर रहे हैं। आपसे हर हफ्ते मिलना आप तो एक रिवायत की तरह हो गया है। जब आप और मैं पूरे हफ्ते जिंदगी की कश्मकश से जूझते रहते हैं तो दिल करता है काश सुकून के दो पल मिल जाएं। तो जामीन सुर और सांस तैयार हैं, अपने दिल पर हाथ रखिए और इस सुकून भरे सफर के लिए तैयार हो जाइए। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर निले। आपने ट्यून इन किया हुआ है रेडियो ब्रिस्वानी और ये सुरीला सफर है गजलों का, जिसे हम कहते हैं कारवाए गजल। अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। मोहब्बतों में अजब है दिलों का धड़का सा, कि जाने कौन कहां रास्ता बदल जाए। मिले हैं यूं तो बहुत, आओ अब मिले यूं भी, कि रूह गर्मी इन्फास से पिघल जाए। हर एक लहजा यही आरजू यही हसरत, जो आग दिल में है वो शीर में भी ढल जाए।

अजाब ये भी किसी और पर नहीं आया कि एक उम्र चले और घर नहीं आया। इस एक ख्वाब की हसरत में जल बुझी आंखें, वो एक ख्वाब की अब तक नजर नहीं आया। आदाब ख्वातिनो हजरात, मैं आपका रेडियो हम सफर निला एक बार फिर से हाजिर हूं। हमारी जिंदगी कई रिश्तों के दायरों में बंधी होती है। उन रिश्तों में एक बड़ा ही पाक रिश्ता होता है दोस्ती का। हम अपने रिश्तेदार तो चुन नहीं सकते, पर हम दोस्त चुन सकते हैं जिनके साथ हम बेपर्दा होकर अपने दिल का हाल बयां कर सकते हैं। पर जिंदगी इतनी भी आसान नहीं होती। कई बार हम अपनी तरफ से जिसे अपना हमदर्द समझते हैं, वो भी कुछ ऐसा कह जाता है कि दिल जार जार हो जाता है। और ऐसे में मैं ये सोचता हूं कि नुकसान किसका हुआ, उस दोस्त का जिसने दगा दिया, या उसका जिसने पूरी शिद्दत से रिश्ता निभाया। तभी तो दिल कह उठता है कि हर एक बात को क्यों चुपचाप सुना जाए, कभी तो हौसला करके ना कहा जाए। सुंदर ये कारवाई गजल, पेश खिदमत है अगली गजल आप सभी के लिए। करें तो किससे करें ना रसाइयों का गिला, करें तो किससे करें ना रसाइयों का गिला, सफर तमाम हुआ हम सफर नहीं आया। दिल की बात बदन की जबां से कह देते, ये चाहते थे मगर दिल इधर नहीं आया। अजीब ही था मेरे दौर गुमराही का रफीक, बिछड़ गया तो कभी लौट कर नहीं आया।

उस बस्ती से छूटकर तो हर चेहरे को याद किया, जिससे थोड़ी सी अनबन थी वो अक्सर याद आया है। आप सुन रहे हैं कारवाई गजल रेडियो ब्रिस्वानी पर। ऐसा कहते हैं जब आंख बंद कर दिल पर हाथ रखते हैं तो उसका चेहरा सबसे पहले जहन में आता है जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। पर एक बात बताता हूँ आपको, आमतौर पर जिसके साथ अनबन होती है आप उसे भी उतना ही याद करते हैं जितना किसी को प्यार में करते हैं, उसकी हर बात की तरफ नजर रखते हैं। क्योंकि हुजूर अनबन भी तो उन्हीं से होती है जिनसे प्यार आप करते हैं, क्योंकि जहां प्यार है वहीं तकरार भी है। उनके रूठने से जिंदगी में एक खालीपन सा आ जाता है ना, कुछ कमी सी महसूस होने लगती है, कुछ खलिश रह जाती है। चाहत भी है, सुकून भी है, दिलबरी भी है। चाहत भी है, सुकून भी है, दिलबरी भी है, आंखों में ख्वाब भी है, लबों पर हंसी भी है। दिल को नहीं है शिकायत किसी के साथ, यूं तो गुजर रहा है हर एक पल खुशी के साथ, फिर भी कोई कमी सी है क्यों जिंदगी के साथ। फिलहाल मैं आपके साथ हूं, आपका रेडियो हम सफर निले और आप सुन रहे हैं कारवाई गजल, आप रेडियो ब्रिस्वानी पर हैं। अजमतों के बोझ से घबरा गए, सर उठाया था कि ठोकर खा गए। कैद खाने से रिहाई यूं मिली, हौसले जंजीर को पिघला गए। एक नई उम्मीद के झोंके मेरे पांव के छालों को फिर सहला गए। उन बुतों में जान हमने डाल दी, दश्त तन्हाई में जो पथरा

मोहब्बत के लिए खूबसूरत होने की कैसी शर्त? इश्क हो जाए तो सब कुछ खूबसूरत लगने लगता है। ये बात आपने भी पहले सुनी होगी, पर कभी आपने इस पर गौर किया है कि ऐसा क्यों होता है कि इंसान को जब प्यार हो जाता है तो पूरी कायनात खूबसूरत लगने लगती है। मुझे लगता है कि जब आप खुश होते हैं, किसी दूसरे शख्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, अपने आप में ज्यादा गुम रहते हैं, तब आप किसी भी शख्स की बुराई या कमियों को बड़ी आसानी से दरकिनार कर देते हैं। जजमेंटल नहीं होते आप तब, क्योंकि आप दिल से खुश होते हैं। इसलिए जनाब, मेरा कहना मानिए, अपनी जिंदगी से मोहब्बत कीजिए, फिर देखिए ये दुनिया कितनी खूबसूरत लगेगी। वरना अभी जो पल है उसे खो देंगे और जिंदगी भर उसे खोजा करेंगे। सुनते रहिए कारवाई गजल अपने रेडियो हम सफर निले के साथ। अपनी नजर से कोई मुझे जगमगा गया, अपनी नजर से कोई मुझे जगमगा गया, महफिल में आज सबकी निगाहों में छा गया। कल तक तो इस हुजूम में मेरा कोई न था, लो आज हर कोई मुझे अपना बना गया। आता नहीं था कोई परिंदा भी आसपास, अब चांद खुद उतर के मेरी छत पे आ गया। जो दर्द मेरी जान पे रहता था रात दिन, वो दर्द मेरी जिंदगी के काम आ गया।

अनकही बातों को कहने से मिलेगा भी क्या, मेरा महबूब तो पत्थर है सुनेगा भी क्या। किस लिए करते हो तामीर हवाओं में महल, कोई ताहश्र जमाने में रहेगा भी क्या। गम की रुदाद मेरे चेहरे पे लिखी तो है, गम की रुदाद मेरे चेहरे पे लिखी तो है, लेकिन अफसोस कोई इसको पढ़ेगा भी क्या। आप सुन रहे कारवाई गजल, कुछ बातें जो अनकही हैं, हो सके तो वो कह दीजिए। जिंदगी तो एक धुआं है, सब फना हो जाएगा। आंखें बंद होने से पहले या दोस्त चल थोड़ी गुफ्तगू कर लें, वो बातें जो अनकही हैं, हो सके तो वो कह दे, बयां कर दीजिए जो दिल में है। क्योंकि मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस जिद की बात है। एक नादा सा दिल और ढेरों जज्बात है। जज्बात बयां करना, अपने दिल की बात कह देना बड़ा खूबसूरत है, पर उससे भी खूबसूरत वो एहसास है कि कोई है जो हमारी बात को और हमारे जज्बात को समझ रहा है, हमारी बातों के अधूरे सिरों को जोड़कर अनकही बात समझ जाए, खामोशी से बातें चुन सके और उनकी डोरी बनाकर आपकी तारीफ कर सके। मैं आपकी हर अनकही बात को समझ जाता हूं, इसीलिए कारवाएं गजल में आपके लिए गजलों और बेहतरीन नगमों का तोहफा लेकर आता हूं। सुनते रहिए रेडियो ब्रिजवानी पर गजलें बहार, मैं हूं निले आपके साथ।

कभी न कभी हर शख्स के जीवन में ये दौर आता होगा जब वो रोशनी से मुंह छुपाकर अंधेरे में चैन पाता होगा। मुश्किल दौर हर शख्स की जिंदगी का वो हिस्सा होता है जो हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता है। वैसे देखा जाए तो हर शख्स की फितरत होती है कि वो हर पल में जिंदगी तलाश करता है, खुशी तलाश करता है। लेकिन जिंदगी खुशी के लम्हों के साथ गम के लम्हे भी समेटे हुए होती है, और गम के लम्हे ही होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपका हमदर्द कौन है, कौन है जो आपका हमसाया है। वो तब भी आपका साथ देता है जब आपका खुद का साया भी आपके साथ नहीं होता। ऐसा दोस्त, ऐसा साथी जिसे भी मिल जाए, उस पर परवरदिगार की रहमत होती है। अपनी नजर से उसने गिराया कहां कहां, जिसको इधर उधर से उठाया कहां कहां। घर में रहें या घर से हों बाहर, यहां वहां नजरों का नीर हमने छुपाया कहां कहां। ताउम्र हर सफर में दिया साथ किस तरह, अफसोस जिंदगी ने सताया कहां कहां। अब तो इसी मकाम से ये देखना भी है, चलता है मेरे साथ मैं साया कहां कहां।

अनजाने हादसात का खटका लगा रहा। नींद आ रही थी रात मगर जागता रहा। वो सिर फेरी हवा थी आई गुजर गई, एक फूल था जो दिल की तरह कांपता रहा। आप सुन रहे कारवाई गजल, मैं हूं नील आपके साथ। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इंसान को हर बात की जल्दी क्यों होती है? जब छोटे होते हैं हम तब बड़े होने की जल्दी होती है, पढ़ते हैं तो कमाने की जल्दी होती है, कमाने लग पड़ते हैं तो जिंदगी को अगले मुकाम पर ले जाने की जल्दी होती है, और सच कहिए तो इस जल्दी जल्दी में जिंदगी जीना कहीं पीछे छूट जाता है। और यकीन मानिए, जब हम बड़े हो जाते हैं तो जब पूछा जाता है कि क्या चाहिए तो खुदा से बचपना मांग लेते हैं हम। कैसी अजीब सी राय जिंदगी भी, जो गुजर गया उसे तलाश करती है और जो है उसकी कदर नहीं करती। इस महफिल की शमा को जलाए रखते हुए अगली गजल और नगमे पेश करते हुए आपसे कहूंगा कि बस मैं यूं गया और यूं आया। तब तक ये अर्ज किया आपके लिए कि मैं क्या था, शाखे जर्द का एक बर्ग खुश्क तर, निकला जो आंधियों से तो शोलों से जा मिला। मेरा ही रूप था जो पसे पर्दाए वजूद, नफरत से सारी उम्र मुझे देखता रहा। तेज आंधियों में गर्द सफर तक न बच सकी, तेज आंधियों में गर्द सफर तक न बच सकी, मत पूछ मुझसे अब मेरे दामन में क्या रहा। पानी के आर पार निगाहें न जा सकी, दरिया एक और भी तहे दरिया छुपा रहा।

प्यार कभी एक तरफा होता है न होगा, दो रूहों के मिलन की जुड़वां पैदाइश है। ये प्यार अकेला नहीं जी सकता, जीता है तो दो लोगों में, मरता है तो दो लोगों में। आप हैं अपने रेडियो हम सफर निले के साथ। वैसे देखा जाए तो एक तरफा प्यार भी प्यार ही होता है, उसमें भी तड़पन होती है, दर्द होता है। लेकिन एक बात जरूर है, वो शख्स हमेशा खुश दिखना चाहता है, वो जिसे चाहता है उसे जताना चाहता है कि उसके साथ होने से कितनी खुशी मिलती है उसे। प्यार में रूठना, मनाना, तकरार होती है, पर एक तरफा प्यार में तकरार की जगह नहीं होती। दिल की बात हो, इजहार हो, इकरार हो, सभी बातों को संगीत के जरिए बखूबी बयां किया जा सकता है ना। संगीत में वो जादू है जो हर जख्म पर मरहम का काम करता है, हर टूटे दिल का सहारा बन जाता है संगीत। तो अब इस सुरीले सफर को आगे बढ़ाते हैं, सुनते रहिए कारवाई गजल। अपनी धुन में रहता हूं मैं भी तेरे जैसा हूं, अपनी धुन में रहता हूं मैं भी तेरे जैसा हूं, वो पिछली रुत के साथी अब के बरस मैं तन्हा हूं। तेरी गली में सारा दिन दुख के कंकर चुनता हूं, मुझसे आंख मिलाए कौन मैं तेरा आईना हूं, मेरा दिया जलाए कौन मैं तेरा खाली कमरा हूं। तू जीवन की भरी गली मैं जंगल का रास्ता हूं, अपनी लहर है अपना रोग दरिया हूं और प्यासा हूं, आती रुत मुझे रोएगी जाती रुत का झोंका हूं। अपनी धुन में रहता हूं मैं भी तेरे जैसा हूं।

अब आता नहीं मजा अफसाना ये गम सुनाने में, हमको खुदा से काम आ पड़ा आखिरी जमाने में। मंजिले इश्क को दरकिनार कर बेवफा रकीब के संग, रात गुजारी उसे मिलती अबद हमारे गम के पैमाने में। ख्वातीन हजरात, आज मैं आपको अपनी एक मजेदार आदत के बारे में बताता हूँ। मैंने कई लोग देखे हैं जिन्हें कई तरह की चीजें इकट्ठी करने का शौक होता है। कई बार पुरानी चीजों को काफी लोग जमा करते हैं, अपने कलेक्शन को बढ़ाते हैं। मुझे भी कुछ इकट्ठा करने का शौक है। मैं लम्हे इकट्ठे करता हूँ, वो लम्हे जिनमें प्यार है, वो लम्हे जो प्यार से दोस्तों के साथ बिताए, सही मायने में जिए, कुछ अपने अपनों के साथ जिए, वो सब लम्हे मैं अपने दिल की संदूक में संजो कर रखता हूँ। और जब भी अकेला होता हूँ, अपनी इस लम्हे की संदूक को खोलता हूँ और खो जाता हूँ उन बातों में, उन लोगों में जो दिल के बड़े अजीज हैं, साथ ही मेरे उन लम्हों का हिस्सा हैं, एक खूबसूरत हिस्सा। मैं थोड़ा जज्बाती हो रहा हूँ शायद। आप बने रहिए रेडियो बिजवानी के साथ और सुनते रहिए कारवाएं गजल नीले के साथ। ये जानकर भी कि हमने मौत को गले लगा रखा है, खुदा मस्जिद में बैठा रहा आया नहीं हमारे आशियाने में। एक मुद्दत लगी मोहब्बत की जिस आग को सुलगाने में, उसे आया मजा झटके से बुझाने में। मेरे पांव को जो कांटे रंग न सके, उससे रंज कैसा, उम्र बीती जोशे इश्क को ये बात समझाने में।

किनारा मिला जो किनारा नहीं था, बहाना था कोई सहारा नहीं था, यही एक दिल जिसको समझे थे अपना, न जाने किसका था हमारा नहीं था। आप सुन रहे कारवाई गजल अपने रेडियो हम सफर निले के साथ। कभी कभी हम किसी के लिए उतना जरूरी नहीं होते जितना हम समझ लेते हैं। तभी कहते हैं कि जब कोई सामने से इग्नोर करने लगे या दिल कुछ और जवाब देने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि जिंदगी की राह में थोड़ा मुड़ने का टाइम आ गया, रुक कर सोचने का टाइम आ गया। वैसे भी जल्दी करके कोई क्या पा लेगा, थोड़ा रुक कर चलें तो धोखा शायद कम मिलेगा। अपनी किस्मत पे नाज करते गुरूर होता, गर उनके लबों से हमारा मस्कूर होता। गरचे मैंने छुपाया था राज़े दिल तुमसे, डर था तेरी निगाह में ये ना कसूर होता। कहना था पर न कहा इसमें खता मेरी थी, कहता दर्द हिज्र भी जो न मजबूर होता।

जागे हैं देर तक, हमें कुछ देर सोने दो, थोड़ी सी रात और सुबह तो होने दो। आधे अधूरे ख्वाब जो पूरे ना हो सके, एक बार फिर से नींद में वो ख्वाब बोने दो। आप सुन रहे हैं कारवाई गजल, में हूं निले आपके साथ। हर शख्स की जिंदगी में ऐसा दौर आता है जब उसकी जिंदगी में ख्वाब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ख्वाबों से भरी जिंदगी में बड़ी सच्चाई होती है, बड़ी रूह होती है, बड़ी सोलफुल होती है ये जिंदगी। प्यार इंसान को ख्वाब देखना सिखाता है, ख्वाब की तामील हो ना हो। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि होठों पर लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम। बेहतर है कह दें अपने दिल की बात तो सुकून मिल जाए। नहीं, तुमने मुझे देखकर जाने किस तरह सोचा होगा, तुमने मुझे देखकर जाने किस तरह सोचा होगा, काश मैं शक्ल सूरत में थोड़ा और होता। खुदाया क्या हम न पाते अपनी मोहब्बत को, अगर हमें अपनी वकालत का शऊर होता। हम तुम मिल ही जाते किसी मोड़ पर एक रोज, जो इश्क में वसलत व कुर्ब का दस्तूर होता। हैं आलम में रंग नए पुराने यादों के, तुम भी होते परेशान तो मजा जरूर होता। बहुत तड़प तड़प के मैंने यह गजल लिखी है, काश मेरी किस्मत में जमाले हूर होता।

जरूरी नहीं है इश्क में बाहों के सहारे भी मिले, जरूरी नहीं है इश्क में बाहों के सहारे भी मिले, किसी को जी भर के महसूस करना भी मोहब्बत है। आप और हम जुड़े हुए हैं प्यार के बंधन में। देखा जाए तो प्यार और अनुराग में थोड़ा अंतर होता है। अनुराग में पैशन होता है, चीज को अपना बना लेने की जिद होती है। प्यार में बंधन नहीं होता, जिद नहीं होती। इसीलिए मेरा और आपका रिश्ता पाक है, क्योंकि इसमें किसी तरह की जिद नहीं है, सिर्फ अपना बना के रखने की जिद नहीं है। आप सुन रहे हैं कारवाई गजल। ये सफर अब मुकम्मल होने को है, फिर होगी अगले हफ्ते मुलाकात अपने रेडियो हम सफर निले से। दीजिए मुझे इजाजत, बहुत जल्द आपसे मिलूंगा। लेकिन जाते जाते कहूंगा कि कल की सोचो तो भली ही सोचो, सोच अच्छी है तो अच्छा होगा। रब्त का फल है, जरा सब्र रखो, वक्त के साथ ही मीठा होगा। एक ही शर्त पे बांटूंगा खुशी, तेरे गम में मेरा हिस्सा होगा। मेरी कोशिश है अमल उस पे करूं, मैंने गजलों में जो लिखा होगा। खुदा आपका मुहाफिज रहे। टेक केयर, बाय, नमस्कार।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shah Rukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ? लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365 दैट्स 3273-7365 और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उते कॉल करो। इह सुनिआ क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, कोई अच्छा सा lawyer suggest करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद lawyers है तुम्हारी problem का solution. कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
8: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
4: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
5: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाच के मिलेंगे हनुमाना।
4: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में

नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365। दैट्स 3273-7365 और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fijian India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck. और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, intelligent हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road. Duck or fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, intelligent हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 380.

रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
8: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
4: प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवां मोबाइल।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज, रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: भैया सुकू सुकू
1: आई आई या करूं मैं क्या सुकू सुकू आई

हर समस्या के सिर्फ तीन समाधान हैं, हर समस्या के सिर्फ तीन समाधान हैं, सब्र करो, बदल दो या फिर छोड़ दो, सब्र करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। श्रीमद् भगवद गीता की ये बात जिंदगी के हर मोड़ पर, हर परेशानी में हमारे लिए बहुत ज़रूरी और कारगर है। अगर हम इसे याद रखें तो शायद हम जिंदगी के बहुत सारे डिसीजंस बड़े ही आराम से ले सकते हैं। तो चलिए आज एक बार फिर से जिंदगी के ऐसे ही पन्नों को समझने की और जानने की कोशिश करते हैं, जीवन आधार में उस परम पिता परमेश्वर, उस ईश्वर, उस वाहेगुरु अल्लाह और जीसस क्राइस्ट के साथ जुड़कर उनकी कही कई बातों पर जरा ध्यान देके गौर करके अपने जीवन को एक आधार देते हैं, जीवन को सफल बनाते हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं सताक्षी आपके साथ जीवन आधार में और लेकर आई हूं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर यही सफर। आज एक नई सुबह, एक प्यारी सी खूबसूरत सी जिंदगी से भरी सुबह आपके लिए फिर से। आइए इसे एक अगले गाने के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते रहिए मेरे साथ जीवन आधार।

कस्तूरी कुंडल बसए मृग ढूंढे वन माही, कस्तूरी कुंडल बसए मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटघट हरी हैं दुनिया देखे नाही, ऐसे घटघट हरी हैं दुनिया देखे नाही। रेडियो प्रसानी 1701 AM पर आप सुन रहे हैं श्रोताओं जीवन आधार सताक्षी के साथ। हम उस शक्ति को जो इस दुनिया को चला रही है, जिसे हमारी खुशी हमारे गम हर चीज का ख्याल है, या जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में कोई भी सिचुएशन आती है, उसको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढते हैं। मंदिर में, चर्च में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, हर जगह जाके हम उस शक्ति को खोजने की, उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि हमें उसकी कृपा मिल सके, हम उसे प्राप्त कर सकें। लेकिन देखा जाए तो आपके अंदर ही तो वो शक्ति है, आपके अंदर ही वो राम है जिसे आप ढूंढ रहे हैं, आपके अंदर ही वो अल्लाह है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। अपने मन के अंदर झांकिए। मन के अंदर कैसे झांकेंगे? ऐसे नहीं झांकेंगे, मन के अंदर तब झांकेंगे जब अपने मन को समझ पाएंगे। एक बार मन को समझ गए तो ईश्वर को कहीं भी ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हमेशा आपको हर जगह दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। आइए इसी बात पर एक और गीत के साथ बढ़ते हैं आगे, हमारे जीवन आधार के सफर में सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

रेडियो पिस्वानी 1701 एम पर जीवन का आधार, जीवन आधार श्रोताओं आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ। आज अपने जीवन को आधार देने की, उसे समझने की, जानने की हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी। आइए इस अगले गीत के साथ बढ़ते हैं हमारे सफर में आगे।

हम मनुष्य भी कितने अजीब हैं ना, मतलब दुख में तो ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन जब सुख के दिन होते हैं, जब सब कुछ जिंदगी में अच्छा चल रहा होता है, बेहतरीन चल रहा होता है, तो अक्सर रातें हमारी सोकर बीतती हैं, दिन खाकर गुजर जाते हैं। हर एक चीज की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, हम दुनिया की सबसे कीमती या बेशकीमती चीजें पाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे घर में सारी चीजें हमारे साथ हों, हमारे पास ऐसा कुछ भी ना हो सुख सुविधा से जुड़ा जो हमारे पास ना हो, है ना। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा कीमती चीज है, उसे हम अक्सर भूल जाते हैं सांसारिक कीमती चीजों को पाने के चक्कर में। हम भूल जाते हैं कि उस ईश्वर से बढ़कर, उस परमपिता परमेश्वर, उस अल्लाह, उस वाहेगुरु से बढ़कर भला हमारे जीवन में कीमती और क्या हो सकता है। आपको जो मिलता है वो भी उसकी मर्जी, और जो नहीं मिला वो भी उसी की मर्जी। इसी बात पर ही अगला गाना सुनिए। इसे और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी, आप हैं सताक्षी के साथ।

हार आप सुन रहे हैं हर रोज की तरह आज एक बार फिर से रेडियो पुलिसवानी 1701 AM पर और इस आधार में आपका साथ निभा रही है सताक्षी। आज ईश्वर को, उस शक्ति को जो इस संसार को चलाती है, उसे पहचानने की, जानने की एक छोटी सी कोशिश, क्योंकि हम उसे पूरा कभी नहीं जान सकते, लेकिन जितना हम समझ पाए हैं उस ईश्वर को, उस परम पिता को, इसको जानने की एक छोटी सी कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं हमारे जीवन आराधना में। हमें यूं ही सुनते रहिए और आइए आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ।

वाणी 1701 एम पर जीवन आधार आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ। हम अक्सर कहते हैं कि मन हमेशा सही होता है, मन हमेशा सच बोलता है और इसीलिए जो मन कहे वही करना चाहिए। लेकिन यही मन है दोस्तों जो लालची है, जो सब कुछ खुद के लिए पाना चाहता है, सब कुछ खुद के लिए करना चाहता है। यही मन है जो चंचल है और चोर भी है, हर तरफ भागता है, आज यहाँ तो कल अपने फ्यूचर की न जाने कितने ज्यादा दिनों के फ्यूचर की प्लानिंग कर डालता है। मन आपका आज में रहता ही कहाँ है, वो तो कहीं भी कभी भी पहुंच सकता है। हाँ, पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, लेकिन आपका मन पहुंच जाता है। लेकिन इस मन के हिसाब से मत चलिए। माना कि ये मन हर जगह पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी इस मन के हिसाब से मत चलिए, क्योंकि ये मन ही है जो हर पल बदलता है, बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। कहते हैं ना, अभी आप कुछ सोच रहे थे, अब आप कुछ और बात कर रहे हैं। हमारा मन हमेशा अपने रास्ते खुद बना लेता है। मन के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से मन को चलाइए, क्योंकि अगर एक बार आपका मन आपको कंट्रोल करने लगा तो परेशानी बहुत बहुत हो जाएगी। इसी बात पर एक और गाने के साथ बढ़ते हैं आगे। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी और रहिए।

आधार आप सुन रहे हैं हर रोज की तरह आज एक बार फिर से रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर, और इस आधार में आपका साथ निभा रही है सताक्षी। आज ईश्वर को, उस शक्ति को जो इस संसार को चलाती है, उसे पहचानने की, जानने की एक छोटी सी कोशिश, क्योंकि हम उसे पूरा कभी नहीं जान सकते, लेकिन जितना हम समझ पाए हैं उस ईश्वर को, उस परमपिता को, उसको जानने की एक छोटी सी कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं हमारे जीवन आराधना में। हमें यूं ही सुनते रहिए और आइए आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ।

पानी 1701 पर आप सुन रहे हैं जीवन आधार सताक्षी के साथ। अक्सर हम सब अपनी जिंदगी बहुत बड़ी चाहते हैं ना, हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ बहुत बड़ी हो ताकि हम जिंदगी के हर एक पल का मजा ले सकें और ज्यादा दिन जी सकें, ज्यादा दिन अपनी जिंदगी को इंजॉय कर सकें। फिर तो पता नहीं ये जिंदगी कब मिलेगी, मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, लेकिन ज्यादा जियेंगे तो ज्यादा इस जिंदगी को संवार पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि जिंदगी एक दिन की है, चार दिन की है या फिर सालों की है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसे जीते कितना है। बहुत सारे लोग तो बुजुर्ग भी हो जाते हैं लेकिन जिंदगी उन्होंने जी ही नहीं होती है। कम से कम वैसे मत बनिए। जिंदगी चाहे एक दिन की ही क्यों ना हो, लेकिन इसे इस अंदाज में गुजारिए कि ये दुनिया का एक सबसे खूबसूरत और प्यारा पल रहे और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए, आप अपनी जिंदगी का हर पल मुस्कुराते हुए बिता पाएं और औरों को मोटिवेशन दे पाएं। इसी बात पर आगे बढ़ेंगे एक और गाने के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी, आपके साथ है सताक्षी।

दोस्तों ये था आज एक बार फिर से जीवन आधार पर मेरा आपके साथ एक और साथ। कल फिर से एक ऐसे ही साथ पर हम और आप साथ साथ चलेंगे। कल हमें सुनना मत भूलिएगा और आज के सफर से आप लूंगी इजाजत।

गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, सत श्री अकाल, नमस्ते और बहुत सारा प्यार। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे जानी जैन। और मॉर्निंग शो यानी कि जाने का सफर शुरू हो चुका है। मंडे मॉर्निंग है जी, वीकेंड की मस्ती खत्म, अलार्म की ड्यूटी शुरू। और अब मंडे को ना बोरिंग बनाना स्ट्रिक्टली मना है दोस्तों। आप चाहे ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, स्कूल रन कर रहे हैं, किचन में ब्रेकफास्ट बना रहे हैं या फिर बस बेड पर कॉफी के साथ ना रेडियो सुन रहे हैं, वेयर एवर यू आर ब्रिस्वानी आपके साथ है। और आज का मंडे थॉट ये है कि न्यू वीक का मतलब सिर्फ न्यू टास्क नहीं है, न्यू अपॉर्चुनिटीज भी होती है। जो काम पिछले वीक नहीं हुआ उसके लिए गिल्ट नहीं, आज एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए। तो चलिए ब्रिस्बेन वॉल्यूम थोड़ा सा आप कर दीजिए क्योंकि मॉर्निंग ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। सो आइए सुनते हैं, स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को इस गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

चलिए जी, अब बात करते हैं ब्रिस्बेन के इम्पोर्टेंट अपडेट्स की। आज ब्रिस्बेन में वेदर ओवल और सनी कंडीशंस की तरफ है और रीसेंट फोरकास्ट अपडेट्स में वेस्टर्नली विंड्स का नॉर्थ ईस्टर्नली होने की बात कही गई है। स्प्रिंग वेदर का मूड जो है वो काफी वार्म फील हो रहा है, इसीलिए घर से निकलते वक्त वाटर बॉटल और सन प्रोटेक्शन याद रखिए। वैसे ब्रिस्बेन में स्प्रिंग का जो टेम्परेचर है स्विंग भी इंटरेस्टिंग रहा है। सितंबर के बिगिनिंग में सिटी ने 34.4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर एक्सपीरियंस किया था, जो कि रिसेंट ईयर्स के सितंबर टेम्परेचर्स में काफी हाई था। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। और ब्रिस्बेन वालों, आप बताएं जरा, आपको स्प्रिंग वेदर पसंद है या फिर प्रॉपर विंटर वाली ठंडी ठंडी मॉर्निंग्स? मैसेज करके जरूर बताइएगा। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में स्पोर्ट्स लवर्स की अपडेट आप सभी के लिए है। ऑस्ट्रेलिया ने पोलैंड को 3-1 से हरा दिया। डेविस कप में अपनी प्रोग्रेशन जो है वो सिक्योर की है। ब्रिस्बेन के पाथ रेफ्टर अरेना में एलेक्स दे माइनर ने भी कामिल मैच ड्रक को भी सेट में बीट करके ऑस्ट्रेलिया की विक्ट्री सील की है। आपको बता दें कि ब्रिस्बेन स्पोर्ट्स फैन के लिए AFL का भी बड़ा वीकेंड रहा है। ब्रिस्बेन लायंस ने हॉथॉर्न के अगेंस्ट जो है वो प्रीलिमिनरी फाइनल जीता और ग्रैंड फिनाले प्लेस जो है वो सिक्योर की है। मतलब कि ब्रिस्बेन में स्पोर्ट्स का टेम्परेचर भी काफी हाई है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, जानेंगे थोड़ी देर बाद और भी बहुत सारी बातें। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्बानी में। तो अब एक क्विक इंडिया अपडेट। जापान में एशियन गेम्स 2026 का एक्शन शुरू हो चुका है और इंडियन एथलीट्स ने ओपनिंग फेज में स्ट्रांग परफॉर्मेंसेस भी दिए हैं। इंडिया की वुमेन्स क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्लेस बनाया है, जहां पर श्रीलंका से मुकाबला होगा। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट फैन के लिए डेफिनेटली एक्साइटिंग डेवलपमेंट है। जानेंगे थोड़ी देर बाद फिल्म मीटर का आखिर क्या कुछ हो रहा है, क्या तड़के डल रहे हैं। थोड़ी देर बाद सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बानी।

चलिए जी, अब बारी आ चुकी है फिल्मी तड़के की। बॉलीवुड से एक बिग फैमिली अपडेट है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपनी सेकंड बेबी गर्ल के अराइवल के अनाउंसमेंट की है। कपल ने सितंबर 19 को सोशल मीडिया पर यह हैप्पी न्यूज शेयर की है। आपको बताएं कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में दिलजीत दोसांझ परफॉर्मेंसेस के थ्रू हेडलाइंस में है। उनके वैम्बले परफॉर्मेंस को लेकर भी काफी एप्रिसिएशन मिल रही है। और मूवीज की बात करें तो करीना कपूर और पृथ्वीराज सुखमरन की जो दायरा के बॉक्स ऑफिस नंबर्स में सेकेंड डे पर ग्रोथ रिपोर्ट हुई है। मतलब कि दोस्तों, बॉलीवुड में ना मंडे मॉर्निंग भी गॉसिप और एंटरटेनमेंट फुल ऑन है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, जानेंगे थोड़ी देर बाद और भी बहुत सारी बातें। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रह्मानी सुब्रह्मानी फैमिली, एक छोटी सी बात दिल से। कभी कभी हम अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करके सोचते हैं कि उसकी लाइफ इतनी परफेक्ट कैसे है, क्यों लगती है भाई। लेकिन याद रखिए, आप दूसरों की हाईलाइट रील देख रहे हो, अपनी बिहाइंड द सीन्स लाइफ से कंपेयर कर रहे हो। आपकी जर्नी दोस्तों हमेशा अलग रही होगी, आपका टाइमिंग अलग रहा होगा और आपकी स्टोरी भी अपने टाइम पर अनफोल्ड होगी। सो मंडे मॉर्निंग एक प्रॉमिस खुद से कीजिए, मैं अपनी स्पीड पर चलूंगी या चलूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। बस इतना याद रखिए और बस चलते रहिए। इसी के साथ आइए हम बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

वेलकम बैक जो रेडियो ब्रिस्बेन में सुब्रिस्बेन। अब वक्त हो गया है आपसे बाय बाय कहने का। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर मॉर्निंग विद मी एंड रेडियो ब्रिस्बेन। याद रखिए, मंडे को प्रॉब्लम मत समझो भाई, मंडे को अपॉर्चुनिटी समझो। स्माइल रखिए, सेफ ड्राइव कीजिए, हाइड्रेशन का भाई सख्त से सख्त ध्यान रखिए और अपने आसपास किसी एक इंसान का दिन जो है थोड़ा सा बेटर जरूर बनाए। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे जानी जैन और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन। कल फिर मिलेंगे एक फ्रेश मॉर्निंग, फ्रेश एनर्जी और फ्रेश स्टोरीज के साथ। हैव अ ब्यूटीफुल मंडे ब्रिस्बेन। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव एंड ब्रिस्बेन के साथ कनेक्टेड रहिए। टेक केयर, बाय बाय।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आर्लिंगटन।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। स्पेस फोर्स के बाद अब एआई फोर्स की तैयारी में ट्रंप, बोले ये अगली औद्योगिक क्रांति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर एक नई पहल का संकेत दिया है। उन्होंने एआई फोर्स गठित करने और इसके लिए एक एआई सीजर नियुक्त करने की बात कही है। ट्रंप के तकनीक के विस्तार को रोकने की बजाय उसकी निगरानी और मदद की नीति पर जोर देना उनकी नई नीति को दर्शाता है। उनका कहना है कि हम किसी भी तरह इस अविश्वसनीय उद्योग के विकास में बाधा नहीं डालेंगे या उसे दबाएंगे नहीं, इसके बजाय हम इसे महत्व देंगे, इसकी मदद करेंगे और आगे बढ़ने के साथ इस पर पैनी नजर रखेंगे। हालांकि हम बुरे कर्मों पर भी नजर रखेंगे। मोहसिन रजाई का बड़ा बयान, कहा अमेरिका के रुख पर निर्भर होगा फैसला। ईरान ने परमाणु हथियारों के अप्रसार की संधि से बाहर निकलने को लेकर अभी अपना रुख तय नहीं किया है। देश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी मोहसिन रजाई ने कहा कि आगे का फैसला अमेरिका के व्यवहार को देखते हुए लिया जाएगा। उन्होंने परमाणु हथियार विकसित नहीं करने संबंधी धार्मिक आदेश के पालन की भी बात कही है। हुती लड़ाकों की पाकिस्तान तुर्की को धमकी, सऊदी अरब का दिया साथ तो अंजाम भुगतना होगा। यमन के हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के साथ संभावित सैन्य सहयोग को लेकर पाकिस्तान और तुर्की को चेतावनी दी है। ये बयान मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के बाद सऊदी अरब पर बढ़ते हुए हुती हमलों के बीच आया है। समझौते में तीन देशों ने सामूहिक रक्षा का प्रावधान किया है। आइए जुड़ते हैं अब भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। भारत पर 100% टैरिफ का रास्ता खुला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया और ईरान पर प्रतिबंधों से जुड़े नए कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इससे रूसी तेल गैस खरीदने वाले पांच बड़े देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति ट्रंप को मिला है, जिससे भारत और चीन प्रभावित हो सकते हैं। भारत ने कहा है कि उसकी विदेश नीति स्वतंत्र है। इस बीच ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से रिश्तों को बहुत अच्छा बताया है। सेना प्रमुख एपी सिंह बोले, भारत के स्वदेशी विमान पर भरोसे की मोहर। भारत जापान के संयुक्त वायुसेना अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने तेजस में उड़ान भरी। एपी सिंह ने मोरिता की तेजस उड़ान को स्वदेशी विमान पर उनके भरोसे की मिसाल बताया और कहा कि इससे दोनों देशों के बीच लड़ाकू विमान प्रशिक्षण समेत रक्षा समझौते को लेकर नए रास्ते खुल सकते हैं। आइए जुड़ते हैं अब खेलों से और सुनते हैं खेल जगत से जुड़ी प्रमुख खबरें। रोहित कोहली को मिला जयसूर्या का साथ। सनत जयसूर्या ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के 2027 वनडे विश्व कप खेलने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि दोनों दिग्गजों का अनुभव युवा खिलाड़ियों के लिए काफी उपयोगी होगा और टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का संतुलन अच्छा रहेगा। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: Oh, I just love that song so much.
1: Are we back on air?
0: Yeah, as many times as I can hear the
1: beautiful
0: song.
1: Okay.
0: I do not tire of this.
1: Thanks for playing that song. अच्छा, मैंने थोड़ा सा find out किया दोस्तों, अगर आप young देखना चाहते हो और body में क्या बोलते हैं जूरियां ना, wrinkles नहीं चाहते हो, तो wrinkles can appear quickly when the skin suddenly becomes drier. पानी पीना बहुत जरूरी है. ओ लूजेस सपोर्ट अंडरनीथ. कॉमन रीजन इंक्लूड डिहाइड्रेशन. ओ नो वंडर. डिहाइड्रेशन और वेरी ड्राई वेदर विद विच

0: दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि रिंकल से कैसे होता है सब, उसको पश कर रहे हैं। आप शराब बहुत पिए, बिल्कुल शराब से आपका बॉडी डिहाइड्रेट होता है, ठीक है, और समय से सोना चाहिए। अब नहीं रात भर बैठ कर नंगोना भी पिए, कावा पिए, हिसाब से पिए, यानी कि हर नाइट बैठ कर पिए। कुछ लोग हैं जो जगह खोजते रहते हैं बैठ कर पीने के लिए, ये सब बंद करो आप, और अपना हेल्थ को ज़्यादा ख्याल करो। ये मत करना कि जब हेल्थ बिगड़ जाए तब, आई डोंट नो व्हाई पीपल डू दैट, व्हेन द हेल्थ स्टार्ट्स डिटोरिएटिंग देन दे स्टार्ट यू नो
1: टेकिंग एक्शन
0: बीइंग हेल्थ दैट्स नॉट द वे टू गो। अगर शादीशुदा है आप तो एक दूसरे के साथ प्यार से रहो, गुस्से में रहोगे तो फिर रिंकल्स ज़्यादा होंगे आपके पास। अगर अच्छी तरह से रहोगे दोस्तों तो शायद आप लोग भी ये गाना गाओगे।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 04159529526600।
3: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
4: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
3: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
4: बिल्कुल, ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सॉर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
5: एमी
6: जी,
5: Do you know who doesn't have a reverse gear?
6: What? Who does not have a reverse gear?
5: Reverse gear.
6: Who or what vehicle?
5: Well, I know you're going to ask me who or what. Kangaroos are very poor at walking backwards.
6: Oh, kangaroos can't go backwards.
5: Partly because of their large feet and powerful tail. The forward-moving symbolism is often associated with Australia's coat of arms. No. By the way, my youngest son, he gets furious, he gets so upset when he hears people eating kangaroo meat or they're selling kangaroo meat, because he says he's in a coat of arms.
6: That's true. How can you eat your national?
5: Anyway, kangaroo's tail is very strong.
6: Yeah,
5: you know that.
6: Yeah.
5: The most power comes from the tail.
6: Okay.
5: Do monkeys have a strong tail too?
6: Well, don't they swing sometimes?
5: Not like kangaroos.
6: No, I don't think as strong as that. I didn't realize it can't go backwards.
5: It can't go backwards.
6: You think that's why they probably chosen for
5: that?
6: You know,
5: those guys are so intelligent.
6: Forward.
5: They never go backwards. You know that, always forward.
6: So maybe that's why they're on the coat of arms.
5: And they don't. They jump. They just jump. The way they their main movement is jumping, isn't it?
6: Yep. Hopping.
5: They can jump very high, you know that? And that's why their tail is so strong. They use the tail to jump, I think. And do you know sunlight takes about 8 minutes 20 seconds to reach Earth? So when you look at the sun, you are seeing it as it was about 8 minutes ago. Okay. So the ray that we are getting is about that long, 8 minutes and 20 seconds before it hits us. Mm. All right. Okay.
6: Lots of facts today, I have to say.
5: Yeah, little facts that we don't even think about sometimes, you know.
6: Mm. Oh, well.

0: अभी अभी कुछ आया है, थोड़ा फिजी का न्यूज है दोस्तों. लॉयर्स फेस अलेज्ड फोर्जरी चार्जेस. टू लॉयर्स एंड एन अकाउंटेंट ऑफिसर आर ड्यू इन द सुवा मजिस्ट्रेट्स कोर्ट टुडे. पुलिस अलेज्ड टैक्स कंप्लायंस सर्टिफिकेट्स वेयर ऑल्टर्ड इन फेब्रुवरी टू हेल्प ऑब्टेन 2026 प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट्स. द एक्विजिशन रिमेन्स अनप्रूवन बिफोर द कोर्ट. Okay, this is important. More support available for teenagers in Fiji. Fiji is going through a very bad HIV thing, you know. Fiji's health minister says young people can obtain confidential counseling, contraception, and reproductive health assistance through health facilities and trained peer educators. Officials say greater awareness is needed so teenagers know where to seek help without stigma. So, chaliye ya. ये स्टिग्मा वाला प्रॉब्लम है. सो दैट्स गुड, दे कैन कीप इट कॉन्फिडेंशियल एंड हेल्प दिस यंग किड्स एंड एजुकेट देम टू, यू नो.
1: या
0: कम द टाइम नाउ. सो या ओके, इस समय 8:25 हो गए. ओ माय गॉड. और आप सुन रहे हैं रेडियो बिजवानी, आपकी अपनी पहचान. और चलिए आपको बतला दूं कि इस कार्यक्रम के बाद में आप हो जाएंगे किसके साथ, 11 बजे संदेश, और 3 बजे आप हो जाएंगे निविया के
1: साथ. What's happening to you?
0: साक्षी के साथ इस प्रोग्राम के बाद में.
1: Were you teasing me or so seriously?
0: I'm still sleeping, yeah.
1: Hey?
0: Anyway.
1: What happened?
0: I'm sleeping or sleeping, I don't know. Okay.
1: Oh. Boy.
0: Whenever I say that, I remember of someone. You know whom, right?
1: No.
0: Okay, carry on.
1: Okay, carry on.

0: Okay.
1: ओ साथी रे, तेरे बिना भी
0: क्या जीना,
1: जीना क्या जीना। और चलिए एक बार फिर अपना जो हमारे साथी हैं वहां पर सबको फिर से वेलकम कर रहे हैं, और थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग बाय लिसनिंग टू रेडियो बिजवानी। और अच्छा लग रहा है जब आप लोग आ जाते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक गीत चलो मैं चुना हूँ जो रफ़ी साहब ने गाया है, फिल्म 1963 मूवी ताजमहल का गाना है, आई थिंक फॉर प्रदीप कुमार। तो चलो सुनते हैं इस गीत को दोस्तों।

0: जो तुझको हो पसंद वही बात करेंगे। और रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं दोस्तों, आपकी अपनी पहचान। और इस समय जी हाँ 8:42 यानि 17 मिनट रह गया है इस प्रोग्राम में। और इसके बाद जैसे मैंने कहा आप हो जाएंगे सताक्षी के साथ, और फिर पंजाबी प्रोग्राम रहेगा 11 बजे से संदेश के साथ, और 3 बजे से निविया के साथ। ठीक है, तो प्लीज डू लिसन इन। और
1: यू प्लेइंग समथिंग नेक्स्ट? आई विल फॉर श्योर।
0: ओके,

फलसफा प्यार का तू क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया। चलो और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समय कम है। और अगला जो गीत है फिल्म मेरे सनम का, 1965 मूवी मेरे सनम का गीत है, आशा पारक और विश्वजीत चटर्जी। ओह, आई डिडंट नो हिज नेम वाज चटर्जी। ओके, हियर वी गो।

0: जी दोस्तों, हमदम मेरे अभी आपने सुना और चलते आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अब आई डोंट नो, मे बी यू कैन फिट टू सॉन्ग्स, मे बी नॉट। अमिता,
1: लेट्स जस्ट सी, ओके, लेट मी ट्राई,
0: वेल ट्राई एंड सी व्हाट यू कैन डू। ओके,

मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह एकदम फिट और एकदम सही टाइम पर एक बार फिर से सताक्षी रेडियो पिस्तानी 1701 एम पर आ गई है आपकी मॉर्निंग को और भी एनर्जेटिक और खास बनाने के लिए। जी हाँ, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ सताक्षी एक बार फिर से आप एक अपने इट हैपेंस में आपके साथ। वैसे अगर अभी तक आंखें नहीं खुली है तो एक लंबी सांस लीजिए और थोड़ा पानी पी लीजिए ताकि भाई नींद गायब हो पाए और आपके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ पाए, क्योंकि आज का दिन एकदम फ्रेश और नया है। और अगले 2 घंटे आपकी मॉर्निंग को मैं एनर्जी और प्यार से भरने वाली हूँ इट हैपेंस के साथ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चलिए भाई, उठाइए अपने कॉफी के प्याले को और सेलिब्रेट करने के लिए बालकनी में आ सकते हैं आप, या फिर अगर अभी बेड पे बैठने का मन है तो भी इंजॉय कीजिए और मुझे सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी पर। फिलहाल एक अगले ट्रैक के साथ आगे चले, आइए एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए आपका अपना ब्रेकफास्ट शो सताक्षी के साथ।

0: सुनिए।
1: गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। रेडियो प्रस्वानी पर आप सुन रहे हैं इट हैपेंस, सताक्षी आपके साथ है। और इसके पहले कि हम आगे बढ़े, विश कर दें उन्हें जिनके लिए ये पल, ये दिन और आज के एहसास बहुत ही खास है। सो हाँ भाई, आज आपको बजे है या है शादी की सालगिरह, और या फिर जिंदगी में कुछ भी स्पेशल होने वाला है, या फिर जिंदगी में कुछ भी स्पेशल होने वाला है, हम देते हैं आपको बधाइयां और बस इतना सा विश करेंगे आपके लिए, छोटी सी विश कि आपकी जिंदगी से ये खुशियां कभी दूर ना हो, आप हमेशा मुस्कुराते रहें और खुश रहें। तो आपकी खुशियों के नाम आइए प्ले करते हैं ये अगला ट्रैक। हमारे साथ सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी और सुनते रहिए इट हैपेंस।

अच्छा एक छोटा सा सवाल करूंगी अभी इट हैपेंस में, इसके पहले कि हम और आप और ढेर सारी बातें कर रही हैं, ये बताइए कि आज सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल क्या आया? हम सब जब उठते हैं ना सुबह, तो एक थॉट हम सबके माइंड में कुछ ना कुछ आता जरूर है। फिर वो ये हो सकता है कि थोड़ी देर और सो लूं, या फिर यार आज का तो दिन ही बेकार है, आज फिर से बॉस खिटपिट करेगा। ऐसा कोई भी थॉट आपके जहन में भी हर रोज सुबह जरूर आता होगा। हमारा पूरा दिन इस बात पर डिपेंड करता है कि हम पहले 30 मिनट्स में उठने के बाद क्या सोचते हैं। तो आज एक सिंपल सा रूल बना लीजिए, छोटी छोटी चीजें इंजॉय कीजिए, फिर चाय का पहला सिप हो या सुबह की पहली ठंडी हवा का झोंका। चलिए मूड को और सेट करिए इस एक और खूबसूरत गाने के साथ, और सुनते रहिए छापन सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर।

रेडियो पिस्वानी 1701 AM पर आप सुन रहे हैं आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस को। मॉर्निंग शुरू होते ही उनका क्रेज और बढ़ जाता है, जिन्हें वर्कआउट का क्रेज है, जिन्हें फिट रहने का क्रेज है, और वो इस क्रेज को कभी छोड़ना नहीं चाहते और निकल पड़ते हैं अपने वर्कआउट की ओर। जी हाँ, वर्कआउट भी एक पैशन की तरह है। कुछ लोग इससे दूर भागते हैं और कुछ लोग इसे इतना अपना बना लेते हैं, जब तक वो वर्कआउट ना कर ले उनको चैन नहीं पड़ता है। इनफैक्ट अगर वो स्ट्रेस में भी हो ना, तो सबसे पहले वर्कआउट की तरफ भागते हैं। उनको अपना स्ट्रेस रिड्यूस करने का सबसे बेहतर जो तरीका है वो अब वर्कआउट करना लगता है। तो भाई, जिसने फिट रहने की ठान ली, पहले उसको कौन ही रोक सकता है ना। तो मुस्कुराते हुए, हंसते हुए अपने वर्कआउट को एंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनिए अगला ट्रैक। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी, आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवें घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित।
1: आज के 3 back-to-back tracks करते हैं एंजॉय। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM और ये रहा पहला ट्रैक।

जी हाँ, आप बड़ा एंजॉय करते हैं जब आपको बहुत सारे गाने सुनने को मिलते हैं और सताक्षी कम बोलती है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैं इस गाने के उस पार फिर से आपसे ढेरों बातें करूंगी। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रिस्वानी, एंजॉय करते रहिए ठैपन्स और बने रहिए मेरे साथ।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ताँ जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

जाट अपन सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। वैसे दिन जो है वो कब बेहतर हो जाता है, जब हम चाह लें। मतलब हमें पता है कि बॉस खिटपिट करने वाला है, तो दो ऑप्शंस है ना।

हम सोच लेते हैं कि दिन ही खराब है तो फिर कोई क्या ही कर सकता है, दिन तो आपका खराब हो गया, लेकिन हम सोच लेते हैं अगर दिन अच्छा है तो कोई कुछ भी कर ले, हम उस खराब में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं। एक और ट्रैक मेरे साथ इसी बात पे सुनिए और सुनते रहिए रेडियो प्लस पानी, आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

इटहैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ। दोस्तों रेडियो प्रस्वानी पर इस सुबह आपके साथ हूँ और आपकी सुबह को कोशिश कर रही हूँ बहुत ही खास और स्पेशल बनाने की। वैसे सुबह का सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या होता है, आज क्या पहना जाए जिसमें मैं कंफर्टेबल भी रहूं और जो देखे वो तारीफ कर ले। खासकर लेडीज के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है अलमीरा को खोल कर 15 मिनट देखना, ये हम लेडीज की आदत होती है क्योंकि समझ ही नहीं आता कि क्या पहने। अच्छा आपको पता है कि हमारे ड्रेस ना हमारे मूड पर बहुत डिपेंड करती है। जब आपका मूड बहुत अच्छा होता है तो आप कोशिश करते हैं कि आप येलो ड्रेस पहने, ऑरेंज पहने, वाइन कलर पहने या फिर कोई भी ऐसा ब्राइट कलर जो आपके मूड को और सूट करे। लेकिन वहीं जब आपका मूड अच्छा नहीं होता है तो आप डल कलर्स चुनते हैं, ब्लैक चुनते हैं, ब्राउन चुनते हैं और ये ऑटोमेटिक होता है, इसमें आपका ब्रेन ऑटोमेटिक वर्क करता है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हाँ भाई, आपके मूड का असर आपके ड्रेस पे बहुत ज्यादा पड़ता है, तो इसलिए ऐसे कपड़े पहनिए जो आपके मूड को डिस्कवर करें, है ना, और उसे अपलिफ्ट करें और एनर्जी से भरें। एक और ट्रैक मेरे साथ और सुनते रहिए इट हैपेंस। जी आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी, सताक्षी है आपके साथ।

0: विच हर साल जंगला विच अग लगदी है। ऐ तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे, अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.